0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं।

0: उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The hoisting of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of the flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. Nearly 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at the Red Fort this year. They include International Yoga Day volunteers, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, best performing My Bharat volunteers, best performing beneficiaries of PMAYU and street vendors under PM Swanidhi, among others. More from our correspondent.
3: For the first time, national song Bande Mataram will be rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The grand event will commemorate 150 years of the enduring legacy of Bande Mataram and celebrate the energy aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. A total of 2,500 boy and girl cadets of Army, Navy and Air Force and My Bharat volunteers will participate in the celebrations. Delhi police has made elaborate security arrangement in the national capital in view of the ceremony. Around 50,000 security personnel from various agencies have been deployed. Over 1,000 CCTV cameras have been installed at the Red Fort. With Dipendra Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu has said that the Indian economy is the fastest growing major economy.

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: स्टूडियो दी घड़ी अनुसार समा हो रहा है 6:44 ते 20 सेकंड दा। ते आओ हुण सर्वन करदे हां नरिंदर चंचल दी आवाज दे विच ए भगती रचना।

0: दिल्ली है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।

0: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस, नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ से।
2: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने

0: ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में, सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में

0: काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हील चेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन है। एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहां बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहां दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहां दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहां लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके

0: और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गर्द का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गर्द सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
1: अंतर सेना पुलिस सम्मान गर्द

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन

0: की तरह बिठा रहा युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से माँ भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे। इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलिया वाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और वसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद

0: और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राज बिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। इस समय

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: is the man gone! The dog! Yes!
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
2: जी। और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई बेहद रमणीय दृश्य है ये
1: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थी जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंद से गाया है चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं विशेष मेहमान हैं दिल्ली वासी हैं अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं सभी प्रेरणा लेते हैं सभी

0: अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश

हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है।

हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम

किया, हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं।

ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी

इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले मतलब आज से 12 साल पहले हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया, 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ लिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं।

एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना। इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है।

भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए।

आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहें हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्त धारा की चौथी शक्ति है

गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य में दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी

भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने दे।

एक लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है।

स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में, और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत को तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त

भारत पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए।

इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप

जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटियर फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है, और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं।

सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं, अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने

0: स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाए एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश चुकी है, युवाओं का देश है, और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश की प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए, जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह,

0: अपना आशीष देना चाहते हो और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास है उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझ है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं, हमारे उत्पाद

0: उत्पाद जो है वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें। और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं। और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं। और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे। और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है। और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष,

0: शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूं। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी आजादी दी 79वीं वरेगंढ ते 80वें आजादी दिवस मौके माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा दिल्ली दे लाल किले तो देशवासियों नूं संबोधन दा सीधा प्रसारण आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 9:15 ਤੇ 32 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ।

0: झूठी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्य ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया।

0: सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for defence and central armed police forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: Aaj jab hum desh ke log वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
2: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़

0: से गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister

0: हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए

0: today at Gale. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਡੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਏਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨ ਏਅਰ ਐਪਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਕੀ 79ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਔਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਆਜ ਕਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਗਰਵ, आभार, आत्मचिंतन और नए संकल्प का अवसर है। आज जब हमारा प्यारा तिरंगा पूरे गौरव के साथ आकाश में लहरा रहा है, तब हमारे हृदय में उन असंख्य ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूँ, जो देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए दिन रात समर्पित हैं। विशेष रूप से मैं उन वीर परिवारों के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्रियजनों का बलिदान दिया है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम ऑनरिंग फ्रीडम इंस्पायरिंग द फ्यूचर, यानी आज़ादी का सम्मान और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण। इसका अर्थ है कि हम एक और अपने अमर शहीदों के महान बलिदानों को नमन करें और दूसरी ओर उसी से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त एवं विकसित भारत की नींव रखें। प्रिय पंजाब वासियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम कि गाथा पंजाब के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस पवित्र धरती ने लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उद्धम सिंह, करतार सिंह सराभा और असंख्य ऐसे वीर सपूत दिए, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दिया। कदर अंदर

की क्रांतिकारी चेतना हो, जलियांवाला बाग का अमर बलिदान हो, या आजादी की लड़ाई में पंजाब के गांवों और शहरों में उठी राष्ट्रभक्ति की आवाज, इस धरती ने स्वतंत्रता के यज्ञ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस पंजाब राज्य का राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिस पंजाब की आत्मा में वीरता के साथ साथ सेवा, परिश्रम और मानवता भी बसती है। यह वह धरती है जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको के जरिए मानवता और सेवा का तथा पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत के जरिए प्रकृति प्रेम का अमर संदेश दिया। और यही वही भूमि है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और राष्ट्र के खातिर अपना पूरा परिवार वार दिया और सर्वंत दानी कहलाकर दुनिया के सामने त्याग की सर्वोच्च मिसाल पेश की। देवियों और सज्जनों, पंजाबियों ने केवल स्वतंत्रता संग्राम ही में नहीं बल्कि आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अद्वितीय साहस और समर्पण का परिचय दिया है। वर्ष 65 और वर्ष 71 के युद्ध हो, 1999 का कारगिल संघर्ष हो, या फिर राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने वाले सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियान, पंजाब के वीर सपूतों ने सदैव मातृभूमि की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद जब देश के सामने खाद्य सुरक्षा की गंभीर चुनौती थी, तब भी पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हरित क्रांति के माध्यम से हमारे मेहनतकश किसानों ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। आज जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें आधुनिक कृषि, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को अपनाकर पंजाब की इस गौरवशाली कृषि परंपरा को और मजबूत करना है। देवियों और सज्जनों, स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पर हमें अपने गौरवशाली अतीत की प्रेरणा लेते हुए वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर भी विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता के पंजाब का विकास सामाजिक न्याय, कृषि समृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2026 में पंजाब की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण वर्ष बन रहा है। राज्य सरकार की मावाधियां सत्कार योजना के अंतर्गत अब तक 74,59,000 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है तथा 65,62,000 महिलाओं को 2,274 करोड़ रुपए से अधिक का सम्मान राशि जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 40,00,000 जरूरतमंद परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना के तहत गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल की राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अब तक 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब नई उपलब्धि अर्जित कर रहा है। वर्ष 2026 में सरकारी विद्यालयों के 882 विद्यार्थियों ने नीट, 361 ने जेई मेंस और 64 ने जेई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। मैं अपने

युवा साथियों से कहना चाहता हूं, बड़े सपने देखिए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प को अपना साथी बनाएं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 2,91,000 मरीज, लगभग 1,044 करोड़ रुपए का नगद रहित उपचार प्राप्त कर चुके हैं। राज्य भर में 1,090 आम आदमी क्लिनिक सेवाएं दे रहे हैं और इनमें अब तक 5,94,00,000 से अधिक रोगी आगमन दर्ज किए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक तक सहजता से पहुंचे। इसके अलावा महान संत श्री गुरु रविदास जी की महाराज का 650वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। हाल ही में संपन्न ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। हमें विशेष गर्व है कि पंजाब की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टरों हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने देश के लिए 2 रजत पदक जीते। मैं उन दोनों खिलाड़ियों सहित सभी पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों और परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, पंजाब आज नशे के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष लड़ रहा है। राज्य सरकार के युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान के तहत 70,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है। 483 डॉन भारी मात्रा में ड्रग जब्त कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। अपराधियों की 357 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ी गई है और वैज्ञानिक जांच से दम पर 89% की दोष शुद्धि दर हासिल की है, जो आज भी पूरे देश में सर्वाधिक है। मेरे लिए संघर्ष केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है। इसी भावना से मैंने पद यात्राएं, जनसंवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के माध्यम से युवाओं, सुरक्षा बलों, प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया है। पिछले 2 साल में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 25 दिन की पदयात्रा के दौरान मैंने करीब 100 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें मुझे महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला है। हमारे सीमावर्ती गांव राष्ट्र की सुरक्षा की पहली पंक्ति है और नशे के विरुद्ध उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, पूरे समाज की है। हमें नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को उपचार, परामर्श, पुनर्वास के अवसर भी देना है। मुझे विश्वास है कि सरकार, प्रशासन, परिवार और समाज के सामूहिक प्रयासों से पंजाब नशे के विरुद्ध यह लड़ाई अवश्य जीतेगा। हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यात्रा भी लंबी है। हमें जल संरक्षण, कृषि विविधीकरण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, आधुनिक उद्योग, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य ऐसा पंजाब बनाना है जो समृद्ध भी हो, स्वस्थ भी, आधुनिक भी हो और अपनी संस्कृति से जुड़ा भी, और विकसित भारत 2047 की यात्रा में अग्रणी भी हो। जिस पंजाब ने आजादी के संघर्ष का नेतृत्व किया, जिस पंजाब

ने देश की सीमाओं की रक्षा में नेतृत्व किया, जिस पंजाब ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया, वही पंजाब अब विकसित भारत की नई यात्रा का भी नेतृत्व करे, यही हमारा संकल्प है और यही हमारे महान शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवियों और सज्जनों, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में मुझे गर्व है कि चंडीगढ़ सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल, हरित परिवहन और आधुनिक आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंडीगढ़ के लिए यह वर्ष तब ऐतिहासिक बन गया जब 17 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में लगभग 4,700 करोड़ रुपए का विकसित परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया। इसमें पीजीआई, एमआईआर के एडवांस, मैटरनल एंड चाइल्ड सेंटर, एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक, आईटीसीटी कुरालिक और अंबाला चंडीगढ़ के ग्रीन फील्ड हाईवे से जुड़े मार्ग, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के नए छात्रावास तथा धनास में 240 आधुनिक पुलिस आवास शामिल हैं। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद चंडीगढ़ में 7,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई, 6,500 से अधिक आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट न्यायालय से प्रस्तुत की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर 99.93% और महिला साक्षरता 99.89% तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में 2021-22 से 25-26 तक लगातार 5 वर्ष देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उत्तम 3 ग्रेड पाने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है। मार्च 26 में पहली चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित हुई और अब 2027 की एशिया रिले चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पिछले 2 वर्षों में खिलाड़ियों के विकास और सम्मान के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की कुल छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मेडिकल शिक्षा को मजबूत करते हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सेक्टर 32 में एमबीबीएस की वार्षिक प्रवेश क्षमता 150 से बढ़कर 200 सीटें कर दी है। चंडीगढ़ की बुडोल जेल में कैदियों के पुनर्वास के लिए जीवन धारा नामक आईटीआई की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री बस सेवा योजना के तहत 25 नई बसें जुड़ने से शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 100 हो गई है और 328 अन्य बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। 40 नई बसों के साथ अंतर्राज्यीय बसों की संख्या भी बढ़कर 239 हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए वर्ष 25-26 में 5,76,000 पौधों के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 6,64,000 पौधे लगाए गए और इस वर्ष वन महोत्सव के पहले दिन ही लगभग 72,000 पौधे रोपे गए हैं। डड्डू माजरा के पुराने कचरा स्थल का वैज्ञानिक निस्तारण पूरा कर चंडीगढ़ को कचरा ढेर मुक्त शहर घोषित किया है। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत 152 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाया गया है। इनमें 40 आदर्श केंद्र स्थापित हैं। समाधान शिविर, साप्ताहिक जन सुनवाई और डिजिटल शिकायत निवारण के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के और निकट लाया गया है। ये उपलब्धियां चंडीगढ़ को आधुनिक, हरित, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित शहरी विकास के मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अनेक

चुनौतियों का अवसरों में बदलते हुए निरंतर प्रगति की है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.7% रही है और वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,46,532 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हो गया है और 162 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित है। जुलाई 2026 में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन जिंद से सोनीपत रेलखंड पर शुरू हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,338 स्टेशनों में से 208 का पुनर्विकास पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165 हो गई है। देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2014 में 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,06,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 44,14,00,000 कार्ड जारी किए गए हैं और लाभार्थियों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार मिला है। देश भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र ई संजीवनी और टीबी उन्मूलन जैसे पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाया है। वर्ष 2014 से देश में 7 एम्स जो अब 23 हो गए और 387 मेडिकल कॉलेज से अब 808 हो गए हैं। MBBS की सीटें 141% बढ़कर 51,348 से 1,23,700 और PG सीटें 144% बढ़कर 31,185 से 76,174 हो गई है। चंद्रयान 3, आदित्य 1, गगनयान की तैयारियां और प्रस्तावित नेशनल स्पेस स्टेशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता के प्रमाण है। अंतरिक्ष स्मार्ट एप्स की संख्या 2014 मात्र 1 से बढ़कर 2026 में 400 के पार पहुंच गई है। आज लगभग 9 अरब डॉलर की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले 7 से 8 वर्षों में 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दिसंबर 2025 तक भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचा है और वित्त वर्ष 25-26 में 55.3 गीगावाट के जीवांश ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2019 में 66वें स्थान से आगे बढ़कर 2025 में 38वें स्थान तक पहुंच गया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए और निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रक्षा बजट भी वर्ष 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर

0: 26-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपया हो गया है। देश में स्मार्ट ऐप की संख्या 2014 में लगभग 350 से 400 से बढ़कर आज 2.3 लाख से अधिक हो गई है और इस इकोसिस्टम्स ने लगभग 24 से 25 लाख रोजगार अवसर सृजित किए हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए गजेटेड अधिकारी की अनिवार्यता समाप्त कर सेल्फ अटेस्टेशन लागू करना भी एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। 31 मार्च 2026 को लगभग 60 वर्षों की हिंसा के बाद भारत में नक्सलवाद से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया है। आज प्रगति, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, सागरमाला, पीएम वाणी, जल जीवन मिशन और उड़ान जैसे पहलों ने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की नींव रखी है। साथियों, आज हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सामने स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम उस भारत को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? यदि उसका उत्तर पूरी तरह हाँ नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए, अपने आसपास स्वच्छता शुरुआत कीजिए, जल संरक्षण से शुरुआत कीजिए, किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में सहायता में शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाकर और उसे बचाकर शुरुआत कीजिए, किसी युवा को नशे से बचाकर शुरुआत कीजिए, किसी महिला को आगे बढ़ने का अवसर देकर शुरुआत कीजिए और अपने काम को ईमानदारी से करके शुरुआत कीजिए। आइए आज स्वतंत्रता की 79 वर्षगांठ पर हम अपने महान देश और पंजाब के लिए 5 व्यापक संकल्प अपने मन में धारण करें। नशा मुक्त और स्वस्थ युवा, समृद्ध किसान, शिक्षित और कुशल नई पीढ़ी, सुरक्षित और सम्मानित महिलाएं, जल और पर्यावरण की रक्षा करने वाले जिम्मेदार समाज, यदि हम इन संकल्पों को व्यवहार में उतार पाए तो देश और पंजाब की नई कहानी स्वयं लिखी जाएगी। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। यह धरती बलिदानों की है, यह धरती मेहनत और सम्मान की है। खेतों की हरियाली से लेकर सीमा के जवान तक, हर सांस में यह हिंदुस्तान की शान है। अब नया संकल्प हमें निभाना है, नशा मुक्त, शिक्षित और समृद्ध पंजाब बनाना है। पानी बचाना है, पर्यावरण सजाना है और विकसित भारत में पंजाब की अग्रणी बनाना है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को और अधिक मजबूत, समृद्ध, सुरक्षित, न्यायपूर्ण और विकसित भारत दें। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल अपने तिरंगे को सलाम न करें, हम उन मूल्यों को भी सलाम करें जिनका यह प्रतीक है। हम अपने शहीदों के बलिदान को भी केवल याद नहीं करें, अपने कर्मों में उनका सम्मान करें। हम विकसित भारत का केवल सपना न देखें, अपने अपने क्षेत्र में उसे साकार करने के लिए आज से काम शुरू करें। इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।
1: हुण तुसी 80वें आजादी दिहाड़े दे मौके ते पंजाब दे मानयोग राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी दा पंजाब वासियां दे नाम संदेश सुन रहे सी। ए संदेश तुसी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने कार्य, संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी अपना झंडा बुलंद किया है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनेओ फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर चैनल बहुत हद तक विज्ञापनों पर निर्भर हैं। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। कल राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उड़ीसा में लगातार हो रही वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बैतरणी, मधुबलंगा और जालका नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच गाल में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। यह श्रृंखला 2025 से 27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसके साथ ही

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ राजेश। दोस्तों, देश की आजादी की कहानी जो है हमारी फिल्मों में, हमारे सिनेमा में सुनाई देती है कब से, बहुत पहले से। हमने जैसा कि आपको बताया, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। हालांकि भारतीय सिनेमा ने 1857 से पहले के विद्रोही वातावरण को भी पर्दे पर दिखाया। सन 1952 की आनंद मठ ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास के माध्यम से सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि सामने रखी। इसके बाद 1857 की क्रांति के दो प्रमुख चेहरों, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, इन पर भी फिल्में बनी। सन 2019 की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई। वहीं सन 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में आमिर खान ने मंगल पांडे का किरदार निभाया। फिल्म में रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल और किरण खेर भी मुख्य भूमिकाओं में थी। इनके बीच एक और फिल्म जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो है सन 1978 की श्याम बेनेगल की जुनून। शशि कपूर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और जेनिफर कैंडल अभिनीत ये फिल्म 1857 को केवल युद्ध और विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि आम इंसान के जीवन में आए उथल पुथल के रूप में देखती है। अलग अलग समय में बनी इन फिल्मों को अगर हम साथ रखकर देखें तो 1857 की एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक ऐसा भारत जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असंतोष अब खुलकर प्रतिरोध में बदल चुका था।

साथियों, आजादी की कहानी केवल अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं थी। उस समय भारत सामाजिक और वैचारिक बदलावों से भी गुजर रहा था, इसलिए उस दौर के महापुरुषों के जीवन पर बनी फिल्में हमें उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देती हैं। सन 1993 की सरदार में परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई और स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दिखाया। सन 2000 की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में मम्मूटी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका निभाई। फिल्म उनके शिक्षा संघर्ष, सामाजिक भेदभाव और समानता के लिए उनके संघर्ष को सामने लाती है। वीर सावरकर पर सन 2001 में वीर सावरकर बनी और फिर सन 2024 में स्वतंत्र वीर सावरकर आई, जिसमें रणदीप हुड्डा ने सावरकर की भूमिका निभाई। इसी तरह गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं पर बनी फिल्मों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग विचारों को और उन रास्तों को सबके सामने रखा। इन फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके जरिए हमें उस समय का भारत दिखाई देता है जहां राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक बराबरी, आत्मसम्मान और राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर भी गहरे संघर्ष चल रहे थे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: NCRAPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन ने संघर्ष का स्वरूप बदल दिया। सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा ने आंदोलन को आम भारतीयों से जोड़ दिया। सन 1982 की रिचर्ड एटनबरो निर्देशित गांधी में बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सफलता मिली और इसे 8 एकेडमी अवार्ड्स मिले। इसके बाद सन 1996 की द मेकिंग ऑफ द महात्मा में रजित कपूर और सन 2000 की हे राम में नसीरुद्दीन शाह ने गांधी जी की भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक असर को समझने के लिए सन 1963 की बिमल रॉय की बंदनी भी खास महत्व रखती है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म जेल और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक स्त्री के व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी कहती है। बंदनी हमें याद दिलाती है कि आजादी का संघर्ष केवल राजनीतिक नेताओं या क्रांतिकारियों का नहीं था, उसका असर समाज के हर वर्ग तक पहुंचा था। शैलेंद्र का लिखा एक गीत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उन परिवारों की पीड़ा को आवाज देता है जिनके बेटे देश की लड़ाई में चले गए।

दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसी धारा भी थी जिसने अंग्रेजी शासन को सशस्त्र क्रांति और सीधी कार्रवाई के जरिए चुनौती दी। सन 1965 की शहीद में मनोज कुमार ने भगत सिंह की भूमिका निभाई। इसके बाद सन 2002 में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931 शहीद और शहीद आजम जैसी फिल्में आई। अजय देवगन, बॉबी देओल और सोनू सूद ने अलग अलग फिल्मों में भगत सिंह की भूमिका निभाई। भगत सिंह की कहानी चंद्रशेखर आजाद के बिना अधूरी है। वो उनके मार्गदर्शक और साथी थे। सन 1963 की चंद्रशेखर आजाद से लेकर बाद की फिल्मों तक सिनेमा ने अलग अलग समय में आजाद को दर्शकों तक पहुंचाया। क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी बहुत लंबी है। बंगाल में सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने चटगांव में अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। सन 2010 की खेले हम जी जान से और सन 2012 की चिटगांव, इसने चटगांव विद्रोह को पर्दे पर उतारा। इस तरह सिनेमा ने हमें ये समझने में मदद की कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों में समानांतर रूप से अनेक क्रांतिकारी धाराएं सक्रिय थीं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम है बॉलीवुड रील्स और दोस्तों इस प्रोग्राम में सिनेमा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय है कि आप तक पहुंचा दें कुछ खेल से जुड़ी हुई जानकारियां। और अब समय है हमारी अगली

0: move. I feel so happy for Moises going back to Portugal. Although, mind you, when he went to Australia, didn't know much about the language there, and he's gone back to Portugal. How much of Portuguese does he know? So maybe that's a bit of a barrier right now, but he'll overcome it. It's a wonderful late career move for lots of cricketers now. There's a much bigger population in many nations. They can't either represent their nation or not long enough. And for them to be able to go back to another country and start contributing to the game, I think that's absolutely brilliant. He'll have to be a little patient, though, because we've just been told about the story of Scotland and Netherlands and all the rest of the nations that are in line to play bigger cricket. It may take a long time for Portugal to be even reasonably competitive in Europe, but it's great to have somebody who's played at the very highest level, because if there's anything they need in terms of experience, Moises has it. By the way, I played some cricket in Portugal about 25 or so years ago, and I had a wonderful time. Great weather, apart from other things. So maybe it will suit Portugal to try and take the game to a bigger level with Moises. And maybe they could be a part of the European T20 soon with many other nations as well. So overall, I think it's a leadership role that he's now pursuing. And maybe it's paving the way for many others to consider, hey, I can go and play for some other country because I have some connections there. Great move. Well done, Moises.
1: Well, that's all we've got time for on Stumped for this week on Akash Vani. Don't forget to follow us on X. We're at BBCWS Sport and use the hashtag BBCStumped. And check us out on YouTube as well by going to the BBC World Service YouTube channel. Thanks to Charu Sharma and Brett Sprigg and to all of you for listening. We'll speak to you soon. Bye-bye.
2: Dumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akash Vani.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक. ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है. तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे. मुझे HIV है.
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं.
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है. हम सब से मिलने से नहीं.
8: इग्नोर नहीं, याद करो.
9: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
10: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
11: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.
12: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है.
13: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
14: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक. प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स. मैं हूं आपके साथ राजेश. और दोस्तों, एक जो ब्रेक लिया था उससे पहले हम बात कर रहे थे सिनेमा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस तरह से और किन फिल्मों के जरिए दिखाया गया है. बहुत सी

के बारे में हमने आपसे बात की, और कुछ फिल्में अभी भी हैं जिनका नाम लेना, जिनका जिक्र करना, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सन 2004 की श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में सचिन खेडेकर ने नेताजी की भूमिका निभाई। फिल्म ने आजाद हिंद फौज और नेताजी के संघर्ष को गंभीरता से सामने रखा। गांधी जी और नेताजी के रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। इसी तरह सन 2021 की सरदार उधम ने जलियांवाला बाग की त्रासदी को सरदार उधम सिंह के जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया। विकी कौशल ने उधम सिंह की भूमिका निभाई और उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि उसने उधम सिंह को केवल प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी को अपने भीतर वर्षों तक ढोने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। जलियांवाला बाग ने जिस पीढ़ी को झकझोरा था, उसके भीतर आजादी की मांग अब और अधिक तीखी हो चुकी थी। फिर आता है साल 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक मोड़ दिया। सन 1994 की 1942 अ लव स्टोरी ने इस दौर को एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि में दिखाया। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर इसके मुख्य कलाकार थे। फिल्म की व्यावसायिक सफलता सीमित रही, लेकिन इसका संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। मगर 1942 की कहानी का एक कम चर्चित अध्याय था उषा मेहता और उनका भूमिगत कांग्रेस रेडियो। सन 2024 की आए वतन मेरे वतन ने इसी घटना को केंद्र में रखा, जिसमें सारा अली खान ने उषा मेहता की भूमिका निभाई। ये कहानी बताती है कि जब अंग्रेजी सरकार ने समाचार और विचारों की आवाज दबाने की कोशिश की, तब एक युवा महिला ने रेडियो को प्रतिरोध का माध्यम बनाया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़ी रैलियों और आंदोलनों में ही नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे अनेक साहसिक प्रयासों में लगातार चलता रहा।

साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन पर बनी फिल्मों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि उन्होंने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ने की कोशिश की। ये जो गीत अभी आपने सुना, सन 2001 की फिल्म लगान से था, और इस फिल्म ने औपनिवेशिक भारत में किसानों के आत्मसम्मान और सामूहिक प्रतिरोध की कहानी कही। आमिर खान, ग्रेसी सिंह और रघुवीर यादव अभिनीत इस फिल्म ने भारत और विदेशों में शानदार प्रदर्शन किया और अकेडमी अवार्ड्स में देश का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके बाद सन आया 2006 जब आई फिल्म रंग दे बसंती, और इसने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की कहानी को आज के युवाओं के जीवन से जोड़ा। इस फिल्म ने युवाओं में

इतिहास को देखने का एक नया नजरिया पैदा किया। और फिर आता है साल 1947, जब देश आजाद हुआ। वो साल जिसका इंतजार देशवासियों ने वर्षों तक किया। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ विभाजन की ऐसी त्रासदी आई जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया और असंख्य परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1973 की फिल्म गरम हवा ने विभाजन के बाद भारत में रह गए एक परिवार की कहानी के जरिए उस दौर के भय, असुरक्षा और टूटते रिश्तों को बेहद संवेदनशीलता से सामने रखा। वहीं सन 2003 की फिल्म पिंजर में अमृता प्रीतम की कहानी के माध्यम से दुनिया ने विभाजन की त्रासदी को एक स्त्री की नजर से देखा। उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी अभिनीत ये फिल्म बताती है कि राजनीतिक सीमाओं के बंटवारे का सबसे गहरा असर आम इंसान और खासकर महिलाओं के जीवन पर पड़ा। गर्म हवा और पिंजर दोनों हमें याद दिलाते हैं कि 1947 केवल आजादी की तारीख नहीं थी, बल्कि वो लाखों लोगों की विस्थापन, बिछड़ने और टूटने की भी कहानी थी। आजादी से जुड़ी पूरी सिनेमा यात्रा पर नजर डालें तो हम मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिरोध, अंबेडकर का सामाजिक संघर्ष, गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह और सूर्य सेन की क्रांति, नेताजी की आजाद हिंद फौज, उधम सिंह का आक्रोश और उषा मेहता का साहस सब देख पाते हैं। ये कहानियां अलग हैं, रास्ते अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ही आकांक्षा थी, एक स्वतंत्र और सम्मानजनक भारत। आज जब हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं तो ये याद रखना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। संविधान का सम्मान, लोकतंत्र की गरिमा, सामाजिक बराबरी, आपसी सद्भाव और देश की एकता, यही उस संघर्ष के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो बॉलीवुड ट्रेल्स पे आप राजेश को दीजिए अनुमति। आजादी की लड़ाई के तमाम ज्ञात अज्ञात नायकों को नमन करते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल, जिसमें हिमानी दत्ता होंगी आपके साथ, और 1 बजे फिर से मैं और आप होंगे साथ। प्रोग्राम होगा मेरा वाला सॉन्ग। तो आजादी की लड़ाई के तमाम ज्ञात अज्ञात नायकों को नमन करते हुए जय हिंद, और ये गीत हम सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार

0: वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Bharat

0: I beg your pardon, Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examination.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi today outlined an ambitious roadmap for a developed Odisha with emphasis on security, education, investment, infrastructure and employment as the state celebrated the 80th Independence Day. Addressing the state-level function in Bhubaneswar after unfurling the tricolour, Mr. Majhi said, coordinated efforts of the centre and the state have brought left-wing extremism to an end in Odisha, creating new opportunities for development in the affected area. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervour and enthusiasm. The main function was held at the iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. In Punjab, the state-level ceremony was held at the border district of Firozpur, where Chief Minister Bhagwant Singh Mann unfurled the national flag. The national song, Vande Mataram, was played before the national anthem. President Draupadi Murmu today paid homage to the bravehearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The president laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. In men's cricket, India were 101-1 at lunch against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 12:10 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਟਸ ਰੌਕ ਐਂਡ ਡਾਂਸ।

0: नमस्कार।
1: जी श्रोतियो, अज आकाशवाणी FM बठिंडा दे वल्लों प्रोग्राम घर परिवार विच आकाशवाणी FM बठिंडा दी विशेष पेशकश 80वां आजादी दिहाड़ा प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, आजादी दी वरेगंढ दे मौके मैं बलजीत शर्मा ते मेरे सहयोगी सतपाल बराड़ जी आप जी नू बहुत बहुत वधाइयां दिन्ने आ ते शुभ कामनावां दिंदे हां। दोस्तो, अज सारा भारत, सारा पंजाब, भारत दे सारे प्रदेश ते भारत दे सारे देशवासी आजादी संग्राम नू बड़े हर्षो उलास नाल मना रहे ने।

0: जयपुर में चिंगारी फड़क चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी।
1: लेकिन
0: कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब, यही मौका है।

0: महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो।
1: विराजिए तात्या,
0: वक्त आ गया है। सोचा था उससे पहले।
1: हाँ, इसी पल का तो सोच

0: बस नाम है शहंशाह है। अब हम करें तो क्या करें,
1: तूफानी लहर उठ रही है जहां बना उसके साथ।

1876 च ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजराइली ने महाराणी विक्टोरिया नू भारत दी महाराणी घोषित कीता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दी स्थापना ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ढाका विखे 1906 च कीती गई। ब्रिटिश भारत च मुसलमाना दे हितां नू सुरक्षित करन लई एक सियासी पार्टी होण तो इलावा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दी सिरजना च निर्णायक भूमिका निभाई। 1916 च मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस च शामिल हो गए, जो कि सब तो वड्डी भारतीय राजनीतिक संस्था सी। उस समय दे ज्यादातर कांग्रेसियां वांग जिन्हां ने सिक्ख्या कानून सभ्याचार ते अधियोग ते ब्रिटिश प्रभावां नूं भारत लई लाभदायक समझदे होए पूरी तरह सवे शासन दा समर्थन नहीं किता। जिन्हां 60 मैंबरी अंपीरियल लैजिस्लेटिव कौंसल दा मैंबर बन गया, कौंसल कोल कोई असल शक्ति जां अधिकार नहीं सी ते इस च वड्डी गिनती च अणचुणे राजपक्षी वफादार ते यूरोपियन शामिल सन। फिर भी जिन्हां ने बाल व्याहू रोक कानून मुस्लिम वकफ धार्मिक बंदोबस्त नूं जायज ठहराउण च अहम भूमिका निभाई। जिन्हां नूं सैंडहर्स्ट कमेटी च नियुक्त कीता गया, जिस ने देहरादून विखे भारतीय मिलिट्री अकैडमी दी स्थापना च मदद कीती। जिन्हां ने नरम दल वल्लों पहले विश्व युद्ध च अंग्रेजां दी सहायता करन दे फैसले दा भी समर्थन कीता। दोस्तो, आजादी दी गदर लहर दे बारे हुण आपां थोड़ी जी चर्चा कर लिए। गदर पार्टी दी स्थापना 1913 च सोहण सिंह भकना द्वारा कीती गई। गदर लहर एक अजिही लहर सी जिस ने पहली वार अंग्रेज सामराज सामने इनकलाबी सियासी बदल पेश कीता। गदर विद्रोह दी योजना फरवरी 1915 च भारतीय फौज च बगावत शुरू करन दी सी। अमरीका च गदर पार्टी, जर्मनी च बर्लिन कमेटी, बरतानवी भारत च भूमिगत भारतीय क्रांतिकारी अते सैन फ्रांसिस्को च कौंसलेट द्वारा जर्मन विदेश दफ्तर दे विचकार पहले विश्व युद्ध दी शुरुआत वेले इस योजना दी शुरुआत कीती गई। बगावत दी योजना पंजाब तो शुरू होके बंगाल अते बाकी हिस्सियां दियां सैनिक टुकड़ियां च विद्रोह नूं फैलाउण दी सी, पर ब्रिटिश सूइया तंत्र वल्लों कैनेडा ते भारत दे गदरियां च अपने आदमी भेजी गए सन। उन्हां वल्लों दित्ती गई सूह दे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े

0: युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री VD सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
5: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री VD सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, NCC, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए।

0: जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। प्रोग्राम युववाणी तहत तुसी सुनोगे अज बठिंडा विखे मनाए गए आजादी दिवस ते आधारित एक रेडियो रिपोर्ट, जिसका समा रहेगा शाम 6:30 बजे का। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्स अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण ते प्रोग्राम चल रहा है सुरीली दुपहर, जिस दे तहत असी शामिल करने हुंदे हन तुहाडे द्वारा भेजे हुए वट्सअप मैसेजेस ते तुहाडे द्वारा भेजे हुए खत, जिन्हां ते आधारित तुसी अपनी पसंदीदा सोंग गीत सुन सकते हो। लो जी, वट्सअप मैसेजा दा जो साढ़े कोल आ चुके ने जी, करदे हां शुरुआत फिर वट्सअप राही भेजे सुनेहां दी। ते मेरे कोल सुनेहे भेज पहुंच चुके ने जी सारे। गुरलाल माही नंगल तों, माही नंगल, सुखदेव सिंह महंत, जरनैल सिंह मान, पूरा सिंह, बिखर सिंह खारा, बूटा सिंह मसाणा, गुरजीत सिंह ते मानसा कला तो, गुरमेल सिंह, समरजीत सिंह ते प्रीतम सिंह पिंड शेरपुर सौड़िया तो, नेड़े धूरी जिला संगरूर तो, सुनते हाँ जी प्रोग्राम च अगला गीत ज्योतिका तांगड़ी ते नूर चहल दियां आवाज़ां दे विच। इस गीत नूं सुनन दी फरमाइश साढ़े तक पहुंची है जी मोहल्ला हवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर तो, मुहम्मद वकफार फरीदी, मुहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी ते हिना कौसर इस गीत नूं ही सुनना चाहुंदे ने जी। जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल ते विलिस डिकैस्ट्रो भी इस गीत नूं सुनने की फरमाइश साढ़े तक पहुंचा रहे ने जी। जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ ते शिवांगी धाकड़ ए भी इसे गीत नूं सुनने की फरमाइश कर रहे ने जी। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना भी इसे गीत नूं सुनने की फरमाइश पहुंचा रहे ने जी साढ़े तक। छत्तीसगढ़ रिंगनी तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा भी इसे गीत

लीजिए, आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं, रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इस गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन, रूपाली, प्रीति, निधि और परी और इनके परिवार

के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैनगली कसुना से, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं, पुरानी सुना चाहते थे, पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से। ये पत्र है श्रोताओं उत्तर प्रदेश से, सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इस गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फुद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चलाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी। संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारा हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराकड़े, गोकुला बुराकड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डब्वाले हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और ले।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।

0: कर ना करो, अपनी कॉफी और ले।
1: ओह थैंक यू वेरी मच।
0: लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
2: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
2: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
2: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
2: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
2: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
2: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर?
3: ए, कौन है बाहर? अरे कौन है बाहर? देखे, मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
4: अरे हम है बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
3: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
4: चलो यहां से चलो। हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
3: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहां से।
4: हजूर, तेरी बरसात खत्म हो जाए।
3: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
2: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
0: अरे भाई, दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
2: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाए।
3: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
4: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
3: बताओ भला, हा? गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेगी। निगम,

0: ये क्या बताने लगे तुम?
1: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
0: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
1: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
0: हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
1: डॉक्टर मूले।
0: ओह यस
1: एक्जेक्टली, माय गॉड।

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी। अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव है। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम शाम शाम
0: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम
0: हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बहादुर? क्या हुआ क्या बहादुर? अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ बोलो भी।
2: वो
0: क्या क्या वहाँ कहा? अरे भाई रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: कोयला खान में शाम
0: खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: पानी आ गया?
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम
2: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आ साहब, चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूँ। जल्दी आ साहब, जल्दी आ साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को।
3: रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
3: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूं।
0: लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में चूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे।
3: खैर, जाना तो पड़ेगा ही।
0: अरे साहब आ गए।
3: अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर कैसे हुआ ये सब?
4: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। हम तो पहले ही कहते थे साहब दीवार से

0: अपनी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
1: अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग फंसे?
0: अरे साहब होंगे करीब 35।
2: 35?
0: आप कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
1: अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
0: जी साहब वो शंकर गया है।
3: अरे निगम साहब कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? धान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
1: देखिए देखिए देखिए मैं
3: आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद।

0: हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सही सुना
1: भाई, देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी
0: है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या है।
1: अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
0: अरे तो आप किस लिए है, चीफ कभी नजर आते हैं।
1: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात
0: सुनिए। देखिए क्या देखे, तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
1: मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है, चालू हालत में है कि नहीं?
2: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मस्जिद काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
1: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
2: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
1: क्या करूं? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
2: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
3: नमस्ते साहब।
1: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
3: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
1: मैं बात कर लूं?
3: जी
1: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
3: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
1: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
0: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
1: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो।
0: हम लोग मामले को ऊपर
1: पता नहीं बात क्या करनी है।
4: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
1: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
5: कब हुआ ये
1: सर? करीब आधा घंटा पहले। सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
5: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर मर गए?
1: मर गए सर? मतलब
5: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
1: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
5: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
1: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
5: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, बस कोई मरे नहीं। यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी निगम।
1: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, लो फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं, अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी। सर चीफ साहब आ रहे हैं ना? आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
4: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
1: What?
4: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
1: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
4: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो, मनोहर भी गया है उसे लेने।
1: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
4: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
1: पुलिस?
4: जी
1: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
4: चलिए
0: अरे भेजे,
6: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
1: देखिए देखिए आप लोग जरा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। औने दो सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। बदमाश अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता, इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
4: वो देखिए साहब मनोहर वगैरह आ गए।

0: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
1: अरे साहब, वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है,
0: उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, वो शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया साहब।
2: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
0: ताला तोड़ दे?
2: हाँ हाँ भाई, तोड़ दो उसे।
0: अरे मगर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
2: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब,
0: हम तो मामूली कर्मचारी है साहब, आप
2: भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
0: साहब चले चलिए।
2: अच्छा ठीक है, हाँ चलो चलता हूँ मैं।
3: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
4: सुनो
3: जी,
4: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
5: हाँ साहब है।
3: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
4: हाँ साहब। अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं?
3: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसके जोरू बहुत भली है साहब।
4: क्या सात बच्चे?
3: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिले ना साहब, भवानीपुर वाली, वही पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
4: अच्छा
3: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी, इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट फिर।
4: हाँ
5: लीजिए साहब, टूट गया।
2: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
5: अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
3: हाँ कुछ?
5: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
3: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
5: हाँ ढूंढो।
3: मिल गई टॉर्च मिल गई।
5: अच्छा साहब टॉर्च मिल गई।
2: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
4: जी अच्छा। अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती।
2: शंकर
4: जी
2: अभी देखो, अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुला दो उन्हें।
5: जी अच्छा जी अच्छा। अरे ओ बाबू हसो,
2: अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
5: अब बैठो भैया,
2: लगाओ।
6: आप रहने दें, हम निकाल देंगे।
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो, लगाओ तो।
4: ये तो घूमता ही नहीं है।
2: शंकर अरे भाई देखो, ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ।
4: मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा।
2: हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश।
4: अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे? साहब लगता है चीफ साहब आ गए। लोग तो बेकाबू होते जाएंगे। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे।
5: अरे मनोहर
4: जल्दी जल्दी पाई बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते।
5: हाँ सर
4: वो तो नहीं आए, तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
2: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर और तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
5: जी अच्छा।
2: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
5: जी समझो।
2: मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ।
5: हाँ।
2: और सुनो, कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
6: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
2: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
5: ये लीजिए सर,
4: पाइप छोटा ना पड़ जाए।
2: सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
5: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
4: 400 फुट?
5: पाइप 600 फुट लंबा है।
4: अच्छा
5: छोटा
4: अच्छा।
5: नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
7: अरे निगम साहब, जब लोगों की जान चली जाएगी तब
2: क्या होगा? अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
4: शाबाश शाबाश बनो,
2: और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
6: जी सर जी सर। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
2: वेरी गुड चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
5: अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे ये अरे ये पत्थर कौन देख रहा?
2: अरे भाई पत्थर

0: अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
1: अरे पागल हो गए आप क्या?
0: जाने कौन भड़का रहा है ने?
2: ओ, कितना भारी पत्थर है
1: साहब।
2: भैया क्या कर रहे हो तुम लोग?
0: साहब मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
3: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
0: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।
4: देखिए मेरी बात, देखिए मेरी बात।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाए बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया,
4: मगर ध्यान है
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा
0: जी। जी जी,
4: आइए
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब,
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब,
5: शंकर।
3: हाँ साहब,
5: शंकर
3: जी। हाँ साहब,
5: यहाँ पर
3: सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I'm sorry यार, मैंने तो यूं कह दिया था।
1: Really?
2: I'm very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं।
2: ओह गॉड,
4: नर्स, भैया इंजेक्शन।

डॉक्टर कुछ कीजिए, डॉक्टर कुछ कीजिए, डॉक्टर कुछ कीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, डॉक्टर मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, डॉक्टर मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
4: बिल्कुल।
3: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है, उनसे भी आपने डांस करवाया।

0: सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है, ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
1: बोमन ईरानी,
0: बोमन ईरानी को
1: डैनी
0: आपने,
1: डैनजोंगपा,
0: जी, डनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
1: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज
0: जी
1: बड़जात्या जी की,
0: बहुत प्यारी फिल्म
1: बहुत
0: थी,
1: प्यारी फिल्म
0: बहुत
1: थी,
0: प्यारी फिल्म है जी
1: नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए
0: जी
1: डायरेक्टर उस
0: जी
1: फिल्म
0: जी
1: पे,
0: जी
1: एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया,
0: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है, और
1: बहुत
0: आपने
1: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो
0: जी
1: सोच थी उस फिल्म के
0: जी जी
1: पीछे वो सूरज जी,
0: उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है वो फिल्म
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं जिसका नाम है केटिको, केटिको सानू,
0: हाँ
1: केटिको
0: हाँ
1: का मतलब होता है लड़की,
0: अच्छा,
1: हाँ नेपाली भाषा
0: नेपाली
1: में
0: शब्द है
1: लड़की।
0: जी जी
1: तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
0: जी
1: कर।
0: वही
1: अच्छा अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो
0: हाँ
1: इतने ग्रेसफुल डांसर साबित
0: हाँ
1: कर चुके अपने आप को,
0: हाँ
1: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
0: जी
1: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
0: अच्छा
1: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
0: हाँ
1: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
0: हाँ
1: एक
0: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
1: इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन
0: हाँ
1: दिग्गज कलाकारों को।
0: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
1: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है,
0: हाँ
1: अमिताभ बच्चन, डैनी डैनजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ,
0: हाँ
1: अनुपम खेर जी,
0: जी
1: केटी को।
0: केटी को, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया।
1: बिल्कुल
0: हमें भी उस
1: बताऊंगी,
0: मजे को, उस
1: बिल्कुल
0: मजे
1: बताऊंगी,
0: वाली जिंदगी को जीना है।
1: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले
0: जी
1: जाऊंगी।
0: जी चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की,
1: बिल्कुल
0: इस उम्र में
1: पहाड़ी
0: भी
1: लड़की
0: बहुत
1: जी।
0: बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सब

0: सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित
1: बिल्कुल
0: जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
1: हाँ
0: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
1: अच्छा,
0: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
1: जी
0: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था, यानी तो जब वो इस सेट पे आए
1: जी
0: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
1: गुड्डी बड़ी हो गई।
0: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की, तो आपके साथ भी एक गाना किया है। वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था, कम्मो कम्मो,
1: हाँ एक गाना सुना हुआ है जी,
0: अमिताभ
1: जी
0: बच्चन
1: जी
0: और
1: जी
0: संजय दत्त वगैरह। तो हाँ अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे सेट
1: गुड्डी
0: पे।
1: से मास्टर जी।
0: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ।
1: क्या
0: जब मैं
1: बात है,
0: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
1: पूरा लड़का बन
0: पूरा
1: जाती
0: लड़का बन जाती हूँ।
1: हूँ।
0: मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई। सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं। फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ गया। तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
1: जी
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये
0: कि
1: बड़प्पन है।
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था। उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे, सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया।
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं, वो
0: दिन
1: परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की।
0: और वो
1: जी
0: मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
1: हाँ
0: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
1: हाँ
0: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई। और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहां तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है।
0: कि
1: जी
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ, उनका तो जानना है
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो
1: बिल्कुल
0: इतने कमाल के एक्टर है
1: जी,
0: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में।
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी। और उसने वो कर लिया, वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर। और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे और पूरा सेट। उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं
0: वहीं रहते थे। मतलब कि
1: रहते।
0: 500
1: मजा
0: लोग वहीं
1: आता
0: खड़े हैं,
1: था।
0: 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो ताली भी बजा रहे। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे, और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी।
0: और उसके बाद डैनी सर
1: हाँ, उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने
1: हाँ
0: करना है मेरे साथ।
1: हाँ
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
1: करते थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था। और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते हैं, और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती हूँ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी हम
0: बहुत
1: कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगा

0: बहुत असर पे हाथ रखते हैं
1: हाँ
0: हर बार। बहुत अच्छा किया शबीना।
1: हम्म,
0: तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे। अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है। वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी,
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा
1: होता।
0: नहीं होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था, हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों
1: कर
0: नहीं
1: ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी।
0: तो
1: आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस विषय
0: गई,
1: पे बात कर रही हूं, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटर और गुरु मानती हूँ
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ।
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं,
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा, वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया, और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का,
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
1: हाँ,
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को इतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे,
1: जी
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत
0: कोई
1: नहीं है,
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है।
1: नहीं
0: मम्मी ने
1: है।
0: कहा बेटा चलो करते
1: हाँ
0: हैं, देख लो
1: हाँ
0: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए, और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
1: बहुत
0: मेरी
1: प्यारी
0: पहली
1: फिल्म है, बहुत
0: बहुत
1: प्यारे
0: प्यारी
1: गाने
0: फिल्म।
1: हैं जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
1: ये
0: वो मेरे,
1: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
1: हाँ, भारत की बहुत
0: जो
1: सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या
1: जी
0: जो बता दो क्या करना है,
1: जी
0: वो भी बड़े यंग ही थे,
1: हाँ
0: बट वो
1: हाँ
0: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए
1: जी
0: उस वक्त। कुछ भी, सब कुछ नया था,
1: हाँ
0: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
1: वही सीख
0: जिंदगी।
1: रहे थे, वही कर रहे
0: तो
1: थे।
0: वो जब देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है।
1: जी
0: संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
1: हाँ,
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
1: बढ़िया
0: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
1: जी।
0: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
0: हाँ, और
1: बहुत
0: वो
1: ज्यादा गैप
0: समझते
1: नहीं
0: थे कि,
1: था।
0: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो उनकी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब

0: कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी,
1: तो
0: मतलब
1: बताने तो जाना
0: खामोशी के
1: पड़ेगा।
0: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है
1: हाँ
0: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल,
1: हाँ
0: तो तू सिखा, सनी
1: हाँ
0: देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा
1: हाँ
0: जी बोल रहे तू सिखा,
1: हाँ
0: तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
1: रेपो बन
0: गया,
1: गया था
0: तो वो
1: इधर से।
0: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
1: जी
0: पहली दबंग मस्त मस्त दो
1: जी
0: नैन गाने किया
1: जी
0: था, वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या कर रही हो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया,
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया, सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
1: जी
0: रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी, वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था,
1: हाँ,
0: मुझे बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा,
1: उसमें।
0: रामगोपाल
1: जी
0: वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं,
1: जी
0: तो ये चलता रहा चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया है,
1: अब इसके बाद डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ेगी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था
1: हाँ
0: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट, वो हिट वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस
0: क्रिएट
1: चीज
0: हो
1: का।
0: गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है,
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी, दब
1: हाँ
0: स्मैशेस
1: हाँ
0: बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे, फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया
1: हाँ
0: उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे,
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो तो
1: कमर
0: गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य
1: मुझे।
0: जी ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे दिया ये गाना कि
1: अच्छा
0: शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है, तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि खूबत
0: कि ही नोज
1: है,
0: यस
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना दिया,
1: जी जी
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका?
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमेक था जैकलिन का और
1: हाँ
0: सलमान
1: हाँ
0: खान का,
1: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत
0: वो
1: है।
0: गाना मुझे दिया बुला के, तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है,
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर सलमान खान की कोरियोग्राफर सलमान खान
1: हाँ,
0: की कोरियोग्राफर,
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे, नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है,
1: जी

0: श्रोता हमारे साथ है शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020 से 21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह।
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़ जाती
0: है, एक विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं
1: कुछ
0: दूंगी,
1: और
0: मैं
1: काम
0: सिर्फ
1: नहीं
0: इसी के
1: करूंगी,
0: लिए
1: क्योंकि इस
0: डेडिकेटेड
1: फिल्म की
0: जी।
1: डिमांड होनी चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद।

0: रिलीज हो रही है,
1: हाँ
0: और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे या 27 28 साल के होंगे। तो
1: जी
0: ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65 70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा। और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
1: बहुत पुराने समय की बात है ये।
0: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
1: खुशबू उसी
0: लेकिन
1: समय की है।
0: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है। और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने।
1: हाँ, हमारा पुराना वाला अच्छा
0: हाँ,
1: था।
0: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया,
1: हाँ
0: वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
1: उम्र का भी अंतर आ
0: उम्र का
1: गया।
0: भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं अलग करते हैं अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप,
1: हाँ
0: यहाँ पे आपकी अना आपका ईगो नहीं आना चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा, जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है,
1: हाँ
0: उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का
1: हाँ
0: गड्डी लेके,
1: हाँ हाँ
0: वही स्टेप रखेंगे। उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल
1: हाँ
0: शर्मा जी के बेटे हैं,
1: जी
0: उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ
0: मैंने
1: बिल्कुल।
0: कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए। एक
1: जी
0: गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत
0: जो
1: पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है, तो
1: हाँ,
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना
1: खूबसूरत सेट था वो।
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है, ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत।
1: बिल्कुल।
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गंवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के।
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे,
1: हाँ,
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा।
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वाले लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वाले नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है, लेजेंडरी,
1: भारत के वो सबसे बढ़िया
0: बिल्कुल
1: कोहिनूर
0: बिल्कुल,
1: हैं, उन सबको
0: कोहिनूर है वो,
1: आपने काम करवा लिया। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70 60 से लेके 80 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा
0: बिल्कुल
1: है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये
0: बिल्कुल
1: बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
0: मेरा पहला हीरो, मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो,
1: अच्छा,
0: बिल्कुल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव ही
1: जी
0: थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, या वो जो मजाक मस्ती है, या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है, वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है, जो देख रही होती है, वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को।

0: आसान है।
1: आसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटिको में अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है। जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है, वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है, उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पे डांस करते हैं।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
1: काफी काम किया
0: है ना,
1: साउथ में।
0: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
1: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
0: जी।
1: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
0: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
1: उसके
0: आते हैं।
1: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके, एक्टर शुड टच द सेट एट
0: मतलब
1: सेवन।
0: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
1: बिल्कुल।
0: होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7
0: सेवन मीन सेवन।
1: सेवन पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया। नेक्स्ट डे 6:30 7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं,
0: अच्छा।
1: और
0: तो
1: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
0: हाँ,
1: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
0: निकल भी
1: हैं।
0: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
1: एब्सोल्युटली।
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल
0: हाँ,
1: तेरे इश्क में खो
0: हाय हाय,
1: जाते
0: क्या बढ़िया,
1: हैं।
0: बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और
1: प्लीज
0: हम
1: सुनिए।
0: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था,
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को
0: जाएंगे।
1: ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी
1: कदम चली मैं थी,
0: जी
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन
0: ऐसा
1: के
0: होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है। हमारी हमारी
0: जी
1: टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है। हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी,
0: मॉडल
1: हम
0: होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था। तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आपका।
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता है।
1: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पाने, मैंने अपने भाई को फोन किया ऐसे, बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके जाना।
1: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।

0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
0: जी
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दासा फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
0: जी
1: गाने भी अवार्ड्स में थे। फिर
0: जी
1: एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात,
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
0: हम
1: मिल
0: सबकी
1: जाए,
0: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
1: बस
0: नेशनल अवार्ड आना
1: नेशनल
0: चाहिए।
1: अवार्ड आ
0: जिसने
1: जाए।
0: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल
0: या कहें कि किरदारों के

0: जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
0: जी
1: पहली
0: सही
1: बात
0: बात है
1: अपने आप में बहुत।
0: जी।
1: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
0: आपने
1: दोनों
0: बताया
1: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर
0: अलग
1: को देख रहा है, एक
0: जी
1: लेवल अलग है। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
0: जी
1: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उससे
0: अच्छा
1: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था।
0: ओ
1: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं।
0: जी
1: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
0: किससे
1: सके।
0: करवा दें?
1: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
0: जी
1: वैसा पावर चाहिए था।
0: हाँ
1: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना। और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
0: ओ
1: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
0: ओके
1: शो इट टू एवरीबडी।
0: ओके
1: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए, और मैंने सोचा यार सच में,
0: प्रभु देवा के सामने
1: अच्छा
0: डांस
1: प्रभु
0: कर
1: देवा
0: रहे
1: के साथ सामने
0: हो।
1: जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई
0: हाँ
1: वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे। हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो तो
1: है,
0: आ गई।
1: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया, पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड। सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गिव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा, अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही। अब ये पूरा जो गाँव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
0: वो समझ रहे उस
1: वो
0: चीज को।
1: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। जैसे नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
0: क्या बात।
1: एंड देन वो फोटो उतारे, फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले। मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला, मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे। और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब। आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर सर,
0: शबीना बन गई दबंगनी।
1: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो।
0: जी
1: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
0: हाँ
1: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान, दबंगिनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
0: जी
1: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
0: जी
1: कि आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
0: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन बच्चे जैसा दिल
1: बिल्कुल
0: और अच्छा काम,
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण आपको ये
1: बहुत
0: सब
1: जरूरी
0: मिली
1: है,
0: है जी।
1: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में।
0: जी।

0: नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी, बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे, हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली
0: बहुत
1: धड़कन।
0: प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है। अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, मैं तो महंगी नहीं हूं, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या हो।
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से, आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई।

0: 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
1: कैशव और पूरा जवानी सब यही
0: यहीं
1: निकला।
0: पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आप आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
1: जी
0: ये सारे चीजें यही कहती है
1: जी
0: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
1: जी
0: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हर बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात
0: थोड़ी
1: बरतें।
0: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूं बट
1: तू देख ले
0: रास्ते तू
1: तो।
0: देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
1: हाय हाय।
0: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो,
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर
0: बिल्कुल
1: रही
0: नहीं कर
1: होती,
0: रही
1: और
0: होती।
1: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी
0: बिल्कुल
1: बात है शमीना
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको
0: बिल्कुल
1: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
0: बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
0: हाँ
1: थी। तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
0: बिल्कुल
1: साथ में बैठे और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
1: जी
0: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
1: जी
0: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: सो
1: सो
0: मच फॉर
1: मच।
0: हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: सारे ही किसान वीरां, किसान भैणां अते साडे समूह स्रोतियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडा अपना साथी मनदीप कोटली लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम किसान बाणी। सब तो पहला साढ़े समूह रेडियो परिवार वालों तुहानू सारयां नू 80वें आजादी दिवस दियां लख लख मुबारकां। अज दा दिन जिथे देश दी आजादी लई अपनियां जानां निशावर करन वाले महान शहीदां नू याद करन अते सजदा करन दा है, उत्थे ही इह दिन साढ़े उन्हां अन्नदात्यां नू वी नमन करन दा है जो धुप छां गर्मी सर्दी दी परवाह कीते बिना खेतां विच मुड़का वहा के पूरे देश दा ढिड भरदे हन। जवान सरहदां ते देश दी राखी करदे हन अते साडा किसान खेतां विच खुराक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउंदा है। जिवें कि अज दे दिन असीं इक आजाद अते खुशहाल भारत दा संकल्प लैंदे हां, उसे तरह साडी खेती भी नवीआं तकनीकां, चंगी सेहत अते आर्थिक मजबूती नाल हमेशा खुशहाल रहे, इही साडी कामना है। तां आओ बिना किसे देरी दे शुरू करदे हां अज दा प्रोग्राम किसान बाणी ते नजर मारदे हां खेतीबाड़ी जगत दियां अज दियां खबरां ते। किसान वीरो ते किसान भरावो, शुरू करदे हां सब तो पहलां किसान मेले ते यूनिवर्सिटी समागम दी खबर नाल। सुरखी है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वल्लों हाड़ी दे किसान मेलियां दा प्रोग्राम जारी करन बारे, ते सुरखी दा हवाला है डायरेक्टोरेट आफ पसार सिक्ख्या PAU लुधियाणा। किसान भरावो, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाणा वल्लों आने वाले हाड़ी सीजन लई सितंबर महीने दे विशाल किसान मेलियां दा शेड्यूल जारी कर दिता गया है। इस लड़ी तहत पहले मेले बल्लोवाल, सौंखड़ी अते नाग कलां अमृतसर तों शुरू होके गुरदासपुर, फरीदकोट, मुख कैंपस लुधियाणा, बठिंडा अते रौनी विखे

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

जिसकी आसा तिस ही सौंप के इउ रेहा निर्वाण। प्रभाती महला पहला विच साध संगत जी ए शब्द दर्ज है। फिर ए सौंपना करके आसा मनसा डारे तौखले तो उपर उठ जांदे ने ते निर्वाण पद विच विचरदे ने। संसार विच वसदियां रसदियां भी माया तो उपराम रहिंदे ने। गृहस्थ दियां जिम्मेवार

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। देश अज 80वां आजादी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली दे लाल किले तो आजादी दिवस दे जश्ना दी अगवाई की थी। पंजाब विच भी स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर विच होए राजपदरी समारोह च हिस्सा लिया। वख वख खेतरा विच वडमुला योगदान पाउण वालियां 29 शख्सियतां स्टेट अवार्ड नाल सन्मानित। चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ प्रशासन के 37 मुलाजमान ते आम जनता नूं वख-वख खेत्रां विच शानदार सेवावां लई प्रशंसा पत्र प्रदान कीते। ते क्रिकेट विच भारत अते श्रीलंका विचकार दो मैचां दी टेस्ट लड़ी के पहले मैच विच भारत ने दो विकटां के नुकसान ते 288 दौड़ां नाल दिन दी खेड खत्म कीती। हुण खबरां विस्तार नाल। देश अज अपना 80वां आजादी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली दे लाल किले तो आजादी दिवस दे जश्ना दी अगवाई की थी। लाल किले दी फसील तो राष्ट्र नूं संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालां विच देश दे करोड़ां नागरिकां ने अपने दृढ़ इरादे ते समर्पण नाल देश नूं नवीआं उचाईआं ते लिजाण लई हर संभव कोशिश की थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनन दा एक वड्डा टीचा रखे।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
0: पंजाब विच भी स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा है। मुख समारोह सरहदी जिले फिरोजपुर विच होया जिथे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रीय झंडा फहराया ते परेड तो सलामी ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ते राष्ट्र गान गाया गया। उन्हां ने BSF, पंजाब पुलिस, पंजाब आर्म पुलिस, होमगार्ड, NCC कैडेटा दे रक्षा मुलाजमां ते आधारित परेड का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री श्री मान ने फिरोजपुर के हुसैनीवाला विखे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दियां समाधियां ते जाके शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। राज अते देश दे लोकां नूं वधाई देंदिआं श्री मान ने उन्हां सारे शहीदां अते सैनिकां नूं याद कीता जिन्हां ने आजादी दे संघर्ष दौरान अते देश दियां सरहदां दी राखी करदिआं अपनियां जानां कुर्बान कीतियां सी।
3: अज असीं 80वां आजादी दिहाड़ा मना रहे हां। इस मौके ते मैं देशवासियां नूं खास करके पंजाबियां नूं दिल दियां गहराइयां चों वधाई दिंदा। सब तों पहलां मैं शहीदां दी महान धरती फिरोजपुर नूं श्रद्धा ते सत्कार भेंट करदा। आजादी दे संघर्ष दे इतिहास विच फिरोजपुर दा नाम सुनहरी अक्खरां च उकरिया होया। इस मौके मैं सारागढ़ी जंग दे 21 बहादुर सिख सैनिकां नूं भी याद करदा जिन्हां दी याद विच इत्थे गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब सुशोभित है। सतलुज दे कंडे हुसैनीवाला विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मुक्तेश्वर दत्त ते माता विद्यावती जी दियां समाधियां ने उत्थे उन्हां दा अंतम संस्कार ते अस्थियां सुशोभित ने उत्थे नतमस्तक होके आए हां।
2: अमृतसर विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मशहूर अटारी वाघा सांझी चेक पोस्ट ते भी सरहदी सुरक्षा बल वल्लों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। BSF दे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SS चंदेल ने राष्ट्रीय झंडा फहराया अते जवानां तों सलामी लई। उन्हां कहा कि इह बल भारत दियां सरहदां दी राखी लई किसे भी स्थिति दा सामना करन वास्ते हमेशा तैयार है। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: इस मौके मुख्यमंत्री ने वख-वख खेत्रां विच वडमुला योगदान पाउण वालियां 29 उघियां शख्सियतां नूं स्टेट अवार्ड नाल सन्मानित कीता। उन्हां ने पुलिस मुलाजमां नूं वक्कारी मुख्यमंत्री रक्षक पदक अते शानदार सेवावां लई मुख्यमंत्री मैडल नाल भी सन्मानित कीता। उन्हां ने सारे पुरस्कार जेतुआं दी उन्हां दी समर्पित भावना ते सेवावां लई शलाघा करदिआं कहा कि उन्हां दा योगदान लोक भलाई अते पंजाब दी तरक्की लई समर्पण अते ईमानदारी नाल काम करन लई दूजिआं नूं प्रेरित करदा रहेगा।

0: इस मौके पंजाब सरकार दे वख वख विभागां वल्लों सरकारी स्कीमां प्राप्तियां अते कीते कम्मां नाल संबंधित झाकियां पेश कीतियां गईयां। स्कूली विद्यार्थी वख वख तरह दियां वर्दियां विच सजे तजे नजर आए।
1: आजादी दिवस दियां लख लख वधाइयां। मैं इस आजादी दिवस ते कोरियोग्राफी विच भाग लिते ते मैनू बहुत खुशी हो रही है कि मैं आजाद भारत विच जन्म लिया ते उस दे विच असीं आजादी दिवस मना रहे हां। ते मैं टीचरां दा धन्नवाद करदी जिन्हां ने सानू कोरियोग्राफी तैयार करवाई नहीं मेरे नाल, ते प्रशासन दा भी जिन्हां ने सानू स्टेडियम विच पेश करन दी मौका दिता। धन्नवाद।
2: अज भारत दा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा, इस मौके सारयां नू बहुत ही शुभकामना। अज इस दे नाल अज दे दिन देश दे लोकां दे विच आजादी दी झलक दिखाई दिंदी है। असीं अपने स्कूल वल्लों इक नाटक पेश कर रहे हां।
0: ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

0: बच्चे ने उन्हें बड़ा उत्साह देखा गया और मार्च पास्ट और जो मुख्य मेहमान ने अज दे श्री हरदीप सिंह मुंडिया जी उन्होंने उन्होंने भाषण तो बाद बच्चों ने बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ते प्रोग्राम बड़े ही सुचारू ढंग नाल ते जोश नाल अगे वध रहा है।
1: मैं सब तो पहला प्रकाश चंद सीनियर सिटीजन होने के नाते सारे देश वासियों नूं आजादी दिहाड़े दे 80वें इस दिहाड़े ते बहुत बहुत मुबारक दिना ते उन्हां शहीदां नूं जिन्हां ने लखां दी तादाद विच इस आजादी नूं प्राप्त करन लई अपनियां शहादतां दित्तियां उन्हां नूं सिर झुकाउंदा होया नमन करदा ते अपनी श्रद्धा दे फुल अर्पण करदा। इस दे नाल ही मैं देश वासियों नूं इक गल कहनी चाहुंदा कि जिन्नी आजादी नूं लेना औखा सी जिन्नी मुश्किलां दे नाल जिन्नियां कुर्बानियां दे नाल इह आजादी हासिल कीती गई है उन्नियां ही मुश्किलां इस आजादी नूं सामने वास्ते हन। अज लोड है सानू अपनी इस आजादी नूं बरकरार रखन दी इस नूं सांभ के रखन दी इस ते असीं हर वो कम तो गुरेज करिए जिस दे नाल साडी भाईचारक सांझ टुटदी होवे एकता ते देश दी अखंडता दे उत्ते कोई आंच आउंदी होवे सानू अजिहे कम्मां तों दूर रहना चाहीदा है।
2: समागम दे अखीर दे विच डिप्टी कमिश्नर बठिंडा दी अगवाई दे विच मुख मेहमान वल्लों लोड़वंद लोकां नूं सिलाई मशीनां ते ट्राईसाइकल वंडे गए अते इलाके दे लोकां नूं सन्मान पत्र दे के सन्मानित कीता गया। आकाशवाणी बठिंडा नूं भी विशेष तौर ते इलाके दे लोकां दी प्रोग्रामां राहीं सेवा लई सन्मानित कीता गया। ए सन्मान आकाशवाणी दे प्रोग्राम अधिकारी बलजीत शर्मा जी ने प्राप्त किया। इस तरह 80वां आजादी दिहाड़ा पंजाब अते बठिंडा वासियां लई यादगारी हो निबड़िया।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। श्रोतियो आज दे इस प्रोग्राम विच मेरी श्रोतिया अगे गुजारिश है कि क्योंकि असी जानते हैं कि अज असी सारे भारतवासी भारत का 80वां आजादी दिहाड़ा मना रहे हाँ। असी भारत के सारे उन्होंने महान शहीदों नू नमन करते हाँ, सिजदा करते हाँ जिन्होंने इस देश की आजादी लई कुर्बानियां दित्तियां। कि इसे करके किसी वीर सैनिक ने आख्या है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा ले ऐ भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। उन्हां सारे महान शहीदों नू नमन करदा होया तुहाडे अगे गुजारिश है कि अज सिर्फ ते सिर्फ देशभक्ति दे गीतां दी फरमाइश जिहड़ी है इत्थों पूरी कीती जाएगी। जेकर तुसीं अपनी पसंद दा कोई भी देशभक्ति दा गीत सुनना चाहुंदे हो तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। तां लो जी साडे श्रोता किन्ने सूझवान सियाणे ने, फोन दी घंटी वजनी शुरू हो चुकी है, वेखते हैं केड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
2: हैलो भाई जी, सत श्री अकाल, सतदेवा जी,
1: सत श्री अकाल, नमस्कार। प्रोग्राम श्याम सुहानी आप जी का स्वागत है श्रीमान।
2: तुहाडा भी स्वागत जी।
1: अपना नाम ते ग्रां दस दियो।
2: हां जी, जिला बरनाला पिंड ढिल्लवां तो सुखदीप सिंह गिल बोलदा जी, नाल मेरा भतीजा जगप्रीत सिंह गिल।
1: वाह, सुखदीप सिंह गिल जी ते जगप्रीत गिल जी दोहां चाचा भतीजा दा प्रोग्राम श्याम सुहानी विच तुहाडा स्वागत है।
2: आकाशवाणी
1: बठिंडा परिवार वालों भी साडे सारे श्रोतियां नूं आजादी दिहाड़े दीआं बहुत बहुत मुबारकां।
2: हांजी हांजी, गीत सुनना जी हरमिंदर गरेवाल दा ते सुदेश कवल दा गीत है
1: श्रीमान। फोन करने लई शुक्रिया, पेश है तुहाडी फरमाइश ते रविंदर गरेवाल दी आवाज विच एक गीत।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले, नखरे ना कर।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते सही दोस्ती निभाओ ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: जी हाँ श्रोते, तुसी आनंद मान रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सचदेवा दे नाल। वेखदे हां केड़े श्रोता ने डायल कीता है 0164-2240-331। हैलो
4: हैलो सचदेवा साहब, सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे?
4: तुहानू दा तुहानू ते तुहाडी टीम नू ते सारे श्रोता नू 15 अगस्त दीआं लख लख वधाईआं जी।
3: जी, आकाशवाणी बठिंडा परिवार वल्लों भी आप सब नू भारत दे 80वें आजादी दिहाड़े दीआं बहुत बहुत मुबारकां।
4: शुक्रिया जी, शुक्राना जी तुहाडा जी।
3: अपना नां ते ग्रां दसो।
4: नाम हैगा जी मेरा परमजीत सिंह, पिंड फत्ता मालोका, जिला मानसा जी।
3: वाह परमजीत सिंह जी, की काम कार करदे हो?
4: इलैक्ट्रीशियन दा काम है जी अपना जी।
3: चलो फिर तां लोकां दे घरां च चानण करदे हो जो नेरा आ जांदा। रोशनी फैलांदे रहो, अपनी फरमाइश दसो।
4: फरमाइश हैगा जी, तिरंगा फिल्म हैगी जी, अपने नाना पाटेकर ते दिलीप कुमार दी पुरानी फिल्म है जी।
3: अच्छा जी,
4: ओहदे विच गीत अपना हैगा, गीत हैगा जी मेरी शान तिरंगा है, वो
3: वंदे मातरम दा शंकर महादेवन ने गाया जी।
4: हां जी हां जी
3: जी, जनाब तुहाडे नाल गल्लां करके वधिया लग्गिया। पेश है तुहाडी फरमाइश ते शंकर महादेवन की आवाज़ में एक गीत। फोन करने शुक्रिया।

मेरा रंग दे। श्रोतेओ प्रोग्राम शाम सुहानी अजे जारी है। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी मुताबिक समा हो रहा है शाम के 7:29:50। हुण तो थोड़ी देर बाद 7:30 बजे पंजाबी विच खबरों का बुलेटिन आकाशवाणी के जलंधर केंद्र राही रिले किया जाएगा। थोड़ी देर लई इसका साडे नाल इंतजार करो।

0: जी हाँ श्रोते, फोन दी घंटी बज रही है, वेखदे हैं किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, नमस्कार, कौन जनाब?

अच्छा चलो जी, फोन आज देशभगती दिलावांगे, फोन करने लिए शुक्रिया। हाँ पेश है तुहाडी फरमाइश ते ए गीत। इसे ही गीत लई फरमाइश आई सी, फोन कट गया सी। ए कॉल सानू आई सी क्लॉक टावर बठिंडा तो, जयदीप सिंकलेर ते उन्हां दे साथियां दी। पेश है इन्हां सारयां दी फरमाइश ते ए गीत।

0: जी हां श्रोतो, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सदेवा दे नाल। वेखते हां किसने डायल कीता है 0164-2240-331। हैलो
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बड़ी प्यारी ते मिठी आवाज है, कौन बोल रहे ने?
1: मैं सोहन लाल बोलदा, पिंड सलाम वाला जिला फाजिलका तो।
0: सोहन लाल जी फाजिलका तो बोल रहे हो? पाकिस्तान ते भारत दे बॉर्डर तो बोल रहे हो? वाह वाह, मौसम कैसा है?
1: मौसम ठीक है जी, बदलबाजी है।
0: बदलबाजी है फिर, अज मीह पवा दे हो? बारिश पवे तो गर्मी तो निजात मिले जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है गर्मी तो। अपनी फरमाइश दसो सोहन लाल जी। ये गीत मैं तुहानु जरूर सुनावांगा, की काम कार कर दे हो? फोन कर ली, शुक्रिया। पेश है फरमाइश से एक ही।

0: जी हाँ श्रोतियों, समा बड़ी तेजी नाल अगे गुजर रहा है। देखते हैं कि श्रोता ने डायल किया है 0164-2240-331। हैलो,
1: सर जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल, नमस्कार। ये प्यारी मिठी आवाज मलकीत सिंह हो रही है, मैनू लग रहा है।
1: हाँ जी जमा सही पछाण है सर जी।
0: वाह मलकीत सिंह जी, तुहानू तां साडे श्रोता पहली आवाज तो ही पछाण जांदे ने, की हाल चाल ने?
1: हाल चाल बहुत वधिया जी। अज देश आजादी दीआं तुहानू लख लख वधाईआं, टेक्निकल टीम नूं वधाईआं जी।
0: जी आकाशवाणी बठिंडा परिवार और ते साडी तकनीकी टीम वल्लों आप नूं वी भारत दे 80वें आजादी दिहाड़े दीआं बहुत बहुत मुबारकां। की हाल चाल ने जनाब?
1: बहुत वधिया जी। सुना दो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले से भी।
0: हाँ, महिंदर कपूर दी आवाज दे विच फिल्म उपकार दा ये गीत, ते तुहानू पता ना मलकीत जी, इस गीत नूं बोल दिते हन गुलशन बावरा ने, जेड़े की बहुत खूबसूरत गीतकार होए ने।
1: बहुत वधिया गीत है जी, जोश भर जांदा पूरा गीत।
0: बिल्कुल, फोन करने लई शुक्रिया मलकीत जी। पेश है तुहाडी फरमाइश ते ये गीत।

0: प्रोग्राम शाम सुहानी
1: एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है 7:59:45। हुण तो थोड़ी देर बाद 8 बजे तुसी सुनोगे पंजाब अते चंडीगढ़ विखे मनाए गए 80वीं आजादी दिहाड़े ते आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। थोड़ी देर लई इहदा साडे नाल इंतजार करो।

0: भी आधारशिला रखी है। यातायात और क्षेत्रीय संपर्क को निर्बंध बनाने की दृष्टि से आईटी सिटी कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे का लोकार्पण तथा अम्बाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे के जुड़े स्मर का शिलान्यास किया है। इन सब मार्गों के शुरू होने से पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों को चंडीगढ़ और जीरकपुर में भारी ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, उनकी यात्रा सुगम होगी। वहीं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के नए छात्रावास एवं आधुनिक मेज भवन का लोकार्पण तथा रिसर्च छात्रावास का शिलान्यास किया है। इसके अलावा सेक्टर 46 पे राजकीय महाविद्यालय के नए छात्रावास का भी लोकार्पण किया है। साथ ही धनास में पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक सुविधा को सुसज्जित करने के लिए 240 आवास भी समर्पित किए हैं, ताकि पुलिस बल और उनके परिवारों का जीवन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बन सके। कानून व्यवस्था की बात करें तो इस क्षेत्र में चंडीगढ़ नए आपराधिक कानून को प्रभावी क्रियान्वयन का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। पहली बार पुलिस फॉरेंसिक विज्ञान अभियोजन न्यायालय और कारागार रूपी आपराधिक न्याय प्रणाली में 5 स्तंभों को न्याय सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे रियल टाइम सूचना आदान प्रदान, बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और त्वरित न्याय की प्रक्रिया को मजबूती मिली है।
1: हुण तुसी सुन रहे सी चंडीगढ़ ते मोहाली विखे होए 80वें आजादी दिहाड़े समारोहां ते आधारित एक रेडियो रिपोर्ट।
2: देश के 80वें आजादी दिहाड़े संबंधी रूपनगर जिले का जिला पद्धरी समागम नहरू स्टेडियम रूपनगर विखे करवाया गया है। इस मौके मुख मेहमान वजो शामिल होकर डिप्टी कमिश्नर रूपनगर श्री आदित्य डेचलवाल ने कौमी झंडा लहराने की रस्म अदा की। उन्होंने शानदार मार्च पास तो सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अपने भाषण में देश के शहीदों नमन करदिया सरकार वालों विकास दी जा रही प्राप्तियां गिनवाईया। इस मौके DSP जशनदीप सिंह मान की अगवाई हेठ वख वख परेड की टुकड़िया वालों सलामी दी गई, जिस विच पंजाब पुलिस, महिला पंजाब पुलिस, पंजाब होमगार्ड, NCC कैडेट्स, वख वख स्कूलां दे अते बैंड दी टुकड़ियां वल्लों मार्च पास विच हिस्सा लिया गया। इस उपरंत वख वख स्कूलां दे विद्यार्थियों वल्लों कोरियोग्राफी, डांस अते गिद्धा आदि रंगारंग प्रोग्राम की पेशकारी की गई।
3: पटियाला दा जिला पदरी समागम इतिहासिक पोलो ग्राउंड विखे मनाया गया। इस मौके शानदार परेड ते सभ्याचारिक प्रोग्राम पेश किते गए। पेश है इस मौके आकाशवाणी पटियाला दी रिपोर्ट।
4: अज 15 अगस्त 2026 नूं देश दा 80वां आजादी दिहाड़ा पटियाला च देश भगती ते उत्साह नाल मनाया गया। जिला पद्धरी समागम च पंजाब दे कैबिनेट मंत्री सरदार गुरमीत सिंह कुडियां मुख मेहमान वजों शामिल होए। मुख मेहमान ने कौमी झंडा लहराया ते परेड दा निरीक्षण करदिआं वख वख टुकड़ियां तों सलामी लई। इस मौके डिप्टी कमिश्नर, जिला पुलिस मुखी, जिला सैशन जज ते होर प्रशासनिक अधिकारी ते स्थानिक नुमाइंदे भी मौजूद रहे। अपने संबोधन च सरदार कुडियां ने देश दी आजादी लई कुर्बानियां देण वाले शहीदां ते आजादी कला याद किया।
5: प्यारे पंजाब वासियो, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी वरसोई नगरी रियासत पटियाला माता काली देवी दे आशीर्वाद वाली धरती विखे 80वें आजादी दिवस मौके मैनू कौमी झंडा लहराउण दा माण प्राप्त होया। देश दी आजादी लई चलिया लहरां जिहदे च गदर, बब्बर और अनेकां ही लोकां ने अपनियां शहीदियां दित्तियां। उहदे विच सरदार भगत सिंह जी शहीद, राजगुरु देव शहीद, सुखदेव सिंह जी शहीद, करतार सिंह सराबा शहीद, ऊधम सिंह जी शहीद, मदन लाल ढींगरा शहीद, लाला लाजपत राय जी शहीद, दीवान सिंह जी काले पाणी और आजादी घुलाटिए वखे वखे समय दे रंभे संघर्षां दे कारण अपने वल्लों वड्डा योगदान पा के अज जिहड़ी असीं आजादी दी फिजा विच रह रहे हैं, उन्हां देश भगतां दे कारण, साडे पुरखियां दे कारण अज आपां नूं आजादी दिवस मनाउण दा मान हासिल होया। जिथे स्वतंत्रता संग्रामी उन्हां ने बहुत वड्डा हिस्सा पाया, उत्थे साडी देश दी फौज हमेशा इस दे सुरक्षा दे लई अपने वल्लों अपनियां शहीदियां दे के योगदान पाउंदी है। अखीर विच मैं भारत के सारे महान शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम करदा होया पंजाब ते देश दी खुशहाली ते तरक्की दी कामना करदा है।
4: आजादी दिवस समागम लई पटियाला तों आकाशवाणी लई मैं प्रीतपाल महाराणा।

0: ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 8:44:47। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 9:45 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ। 9:00 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने

विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत

0: ऑरेंज अलर्ट। एफआईआर जो हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया।

0: इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है।

0: है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka.

0: The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai parmanu urja, nuclear energy. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना

0: दिवस दियां बहुत बहुत मुबारक। देश अज उना महान सपूतों नू बड़े सत्कार नाल याद करता है जिन्होंने देश की आजादी दे लई त्याग कुर्बानी दित्ती, उच्ची मिसाल पेश की अपने तप त्याग अते बलिदान नाल आजादी दे एक मातर टीचे नू लेके अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दित्ती। बापू समेत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों नू मैं प्रणाम करता हाँ। बलिदान की महान परंपरा जगाउण वाले उना महान क्रांतिकारियों नू अज मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हाँ। अज जो भी इस समारोह विच हाजिर हन उना सारियां दे लई अज एक इतिहासक पल भी है। आजादी तो बाद 15 अगस्त नू लाल किले उत्ते पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। अज जदों
1: असी देश दे लोग वंदे मातरम दे 150 साल मना रहे हां ता इस तो वड्डा उत्तम अवसर होर की हो सकता है। मेरे प्यारे देश वासियों, पिछले दिनी देश दे कुछ हिस्सों विच हड़ां दा कहर रहा,
0: जमीन खिसकण दा कहर रहा
1: अते कई परिवार इस नाल प्रभावित हुए हन। असी उना दे दुख दर्द नू महसूस करदे हां। मैं पीड़ित परिवारां नू विश्वास दिवाउंदा हां कि असी पूरा देश उना दे नाल खड़े हां। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र जदो महान बनदा है, जदो अपनियां सिद्धियां नू प्राप्त करदा है, जदो अपने सुपनियां अते अपनी समर्था दे दम ते अग्गे वधदा है, मेरे प्यारे देशवासियों, हुण छोटे सुपनियां नाल कम चलण वाला नहीं है। हुण सानू वड्डे सुपने देखने होणगे, क्योंकि वड्डे सुपने साडी सोच नू भी विस्तार दिंदे हन अते साडी सोच दे दायरे नू होर विशाल करदे हन। साडे संकल्प होने चाहिदे हन। संकल्प दृढ़ हुंदा है ता मुश्किलां अते आफतां दे विचकारो रस्ते कड्डण दी समर्था अपने आप उभर के सामने आउंदी है। अते मेरे प्यारे देशवासियों, साडे संकल्प भी उच्चे होने चाहिदे हन, क्योंकि जदों सुपने उच्चे हुंदे हन, संकल्प उच्चे हुंदे हन, तां साडी समर्था दी उचाई भी वधदी है अते साडियां कोशिशां दी भी उचाई भी वधदी है अते तद जाके ही असी अपने सुपनियां नू साकार कर सकदे हां। मेरे प्यारे देशवासियों, अज भारत ने भी एक बहुत वड्डा सुपना देखा है, दृढ़ संकल्प दे नाल देखा है, तरक्की दियां नवियां ऊंचाइयां नू छूण दे लई देखा है अते ओ सुपना है जदों आजादी दे 100 साल होणगे 2047 विच, असी विकसित भारत बना के ही रहांगे। 140 करोड़ देश वासियां दे पुरुषार्थ अते मेहनत सदका सानू इस टीचे नू हासिल करना है अते जदों दुनिया दी सब तो वड्डी आबादी वाला देश विकसित होण दा संकल्प लैंदा है तां ए दुनिया दियां नजरां विच भी साडे हौसले अते साहस दा प्रतीक बन जांदा है। दुनिया साडे वल देखण दा नजरिया बदलन लई मजबूर हो जांदी है। मेरे सारे देशवासियों, मैं ये गल इंज ही नहीं कह रहा हां, पिछले 12 सालां विच देश दे करोड़ां नागरिकां ने दलित होण, पीड़ित होण, पछड़े होण, आदिवासी होण, पिंडां दे होण, शहरां दे होण, गरीब होवे, मध्य वर्ग होवे, नौजवान होवे, बुजुर्ग होवे, औरत होवे, मर्द होवे, उत्तर होवे, दक्षिण होवे, पूरब होवे, पश्चिम होवे, हर किसी ने पिछले 12 सालां विच एक संकल्प दे नाल, समर्पण दी भावना दे नाल देश नू नवियां ऊंचाइयां ते लै जाण दे लई हर तरह नाल कोशिश कीती है। मैं उना दियां इना कोशिशां दा आदर सहत स्वीकार करदा हां अते उसे दा ही नतीजा है कि इन्ने कट समय विच 25 करोड़ देशवासी गरीबी नू मात दे के गरीबी विच्चों बाहर निकले हन। कि असी कदे फ्रेजाइल 5 विच गिणे जांदे सी।

बात होने तो बाद विश्व विच सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी सी, साढ़े इत्थे भी गल्लां हुंदियां सन, पर सेमीकंडक्टर दा कोई वड्डा प्लान असी अग्गे नहीं वधा सके। अते अज स्थिति की है, अज दी डिजिटल दुनिया विच, अज दी टेक्नोलॉजी विच चिप दी महत्ता असी समझते हां, भावें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होवे, जां साडे मेडिकल इक्विपमेंट होण, जां फिर साडे ट्रांसपोर्ट दे रस्ते होण, हर किसे विच चिप लाजमी है। अते इस दे बिना दुनिया रुक जावे, अजिही स्थिति पैदा हो जावेगी। अते इसे लई भारत ने आत्मनिर्भर होण दी दिशा विच अपने सेमीकंडक्टर प्लांट, वड्डे सेमीकंडक्टर प्लांट, तीन सेमीकंडक्टर प्लांटां दा कम शुरू कर दिता है। उत्थे जो प्रोडक्शन हो रही है वह हुण एक्सपोर्ट होनी भी शुरू हो चुकी है। अते मैं देशवासियों नूं कहना चाहुंदा हां कि आउण वाले 7-8 सालां विच होर 5-7 जां 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होण वाले हन। ये आत्मनिर्भर भारत सानू विकसित भारत दी दिशा विच जाण दा महामार्ग दिंदा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अजकल ये जेड़ी चर्चा क्रिटिकल मिनरल दी हो रही है, सारी टेक्नोलॉजी इसे क्रिटिकल मिनरल ते निर्भर है। भारत इस खेतर विच भी अपने आप नूं सुरक्षित करन विच जुटिया होया है। क्रिटिकल मिनरल दा टीचा सांझा कीता जावे, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन असी लांच कीता है। वैदिक विच असी क्रिटिकल मिनरल्स कोरीडोर बनाउण दी घोषणा कीती है, अते कई देशां दे नाल इस संबंधी समझौते हो रहे हन। विश्व दे कई देश हुण इस क्रिटिकल मिनरल दे विषय विच भारत ते भरोसा करन लगे हन। मेरे प्यारे देशवासियों, जिवें सेमीकंडक्टर दी गल होवे जां क्रिटिकल मिनरल दी, ठीक उसे तरह ही जिस टेक्नोलॉजी दी दिशा विच असी जा रहे हां अते पूरी दुनिया जा रही है, उत्थे भारत दी भूमिका अहम है। हुण एनर्जी तो बिना नवी दुनिया नूं चलाउणा मुश्किल है, अते इसे लई भावें चिप होवे, एआई होवे जां डेटा सेंटर होवे, सानू बहुत वड्डी मात्रा विच बिजली दी लोड़ होवेगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये साडे समय दी मंग है, अते इस लई असी पहला तो ही उस दिशा विच एक तो बाद एक मजबूत कदम चुके हन। एनर्जी सिक्योरिटी दा एक वड्डा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। असी पार्लीमेंट विच शांति एक्ट पास करके एक नवी दिशा वल जाण दा रस्ता तय कर लिया है। साल 2047 तक असी 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा करन दा टीचा लेके अगे वध रहे हैं। इसे एक दहाके विच असी 5 नवे न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करन दा टीचा लेके चल रहे हैं। इस साल भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच मुहारत हासिल करके एक अहम पड़ा पार कीता है, अते उस दे कारण परमाणु बालन विच आत्मनिर्भर बनन दी दिशा विच असी सफलता दा एक बहुत वड्डा कदम चुकिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार साधना दी काट कारण देश रुकदा नहीं है, पर रुकण दा कारण सोच दियां सीमा हुंदियां हन। जदों सोच बज जांदी है, सीमावां विच सड़न लग जांदी है, तां उदों असी अपनी समर्था नूं भी पछाण नहीं पाउंदे। देश नूं कच्चे तेल ते निर्भर रहना पै रहा है, ते ए साडी गलत सोच दे कारण है। तुसी ये जान के हैरान हो जाओगे कि असी अजिही सोच दे कारण अपने समुद्री तट दा लगभग 99% हिस्सा नो गो एरिया घोषित करके रख्या होया सी। असी खुद ही समुद्र दे अंदर जाके एक्सप्लोरेशन ना करन दा फैसला कर लिया सी। ए सोच दी बहुत वड्डी कंगाली सी, ते असी फैसला कीता कि हुणे सब होर नहीं चल सकदा। असी उस 99% हिस्से नूं जो कदे नो गो एरिया होया करदे सी, हुण असी उस नूं गो अहेड

इस कम लई राखवें करके कम नू गति देण दा फैसला कर लिया है। देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी बारे मैं कहा सी कि सानू अल्टरनेट स्रोतां वल भी अपनी पूरी शक्ति लगाना जरूरी है। अते इसे लई ऊर्जा दी सही वरतों नू वधाउंदे होए भारत अज इसे दिशा विच बहुत तेजी नाल कम कर रहा है। 2014 तो पहला, मतलब अज तो 12 साल पहला, साडे देश विच सिर्फ 70 शहरां विच पाइप राही गैस दी व्यवस्था सी अते पाइप राही गैस डिस्ट्रीब्यूशन हुंदा सी। 12 सालां विच असी इन्हां 70 शहरां दी गिनती नूं वधा के 700 शहरां तक पहुंचा दिता है। यह हुंदी है रफ्तार अते यह हुंदा है विस्तार। 2014 तो पहला मुश्किल नाल 20 तो 22 लख घरां विच पाइप राही गैस पहुंचदी सी, जबकि अज पौने 2 करोड़ घरां विच गैस पहुंचाउण दा कम हो रहा है। इसे तरह 12 साल पहला देश विच सोलर एनर्जी दी कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट ही सी। 2 गीगावाट, अज असी 160 गीगावाट दा टीचा प्राप्त कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक होर जानकारी दिंदा हां कि असी इस दा लाभ देश दे मध्य वर्ग अते आम परिवार नू मिले इस पासे भी ओना ही ध्यान केंद्रित कीता है। असी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कीती है अते अज मैनू तसल्ली है कि इन्ने खट समय विच ही 5 लाख करां दा सोलर एनर्जी दे कम विच असी अंकड़े पार कर चुके हां। कम बहुत तेजी नाल चल रहा है। हजारां करां दा बिजली दा बिल हुण 0 हो गया है। हजारां कर अपनी बिजली दी वरतों करन तो बाद वादू बिजली अज वेच के कमाई भी कर रहे हन। इस कम लई हर एक परिवार नू 80,000 रुपए सरकार वल्लों मदद दीती जा रही है, तद जाके असी इस कम नू पूरा कर रहे हां। तो आनू ए जान के हैरानी होवेगी कि साड़ी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन दा कम साडे देश विच 1925 विच शुरू होया सी। 1925 विच कम शुरू होया, पर 90 सालां विच 1925 तो लैके 90 सालां दे अरसे दौरान सिर्फ 30% रेल दा इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके, यानी 90 सालां विच सिर्फ 30% साडी रफ्तार देखो, टीचे नू प्राप्त करन लई साडी दौड़ देख लो। असी इस एक दहाके दे अंदर अंदर 100% कम पूरा कर दिता है। 90 सालां विच 30%, पर पिछले 10 सालां विच 70%। ए हुंदा है कम। अते इस दे कारण डीजल जो सानू बाहरों लियाउणा पैंदा है उसकी बचत हुई बिजली नाल साडी वरन नू भी फायदा होण लग पिया। मेरे प्यारे देशवासियों, असी इत्थे ही नहीं रुके हां, असी दुनिया विच पिछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनी तुसी खबर सुनी होवेगी कि भारत ने बालण दे एक नवे खेतर नू भी छू लिया है अते देश ने पहली हाइड्रोजन नाल चलण वाली ट्रेन शुरू कर दिती है। अते मैनू खुशी है कि सब तो लंबी ट्रेन है अते सब तो ताकतवर ट्रेन है अते दुनिया विच हाइड्रोजन ट्रेन दे खेतर विच भी भारत ने अपना चंडा गढ़ दिता है। पिछले 10 तो 12 साल तो असी लगातार साल 2047 दे टीचे नू प्राप्त करन लई दौड़ रहे हां अते एक तो बाद एक पड़ा सिद्ध कर रहे हां। असी सोचिया भी नहीं सी कि सानू इस विच भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पवेगा। पिछले 10 तो 12 साल विच इन्ने संकटों का सामना करना पिया। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया नू चिंता विच पा दिता सी, सारिया व्यवस्थावां पूरी तरह नाल डगमगा गईयां सन। कोरोना तो बाहर निकले जंग दी भयानकता दियां खबरां आउण लग पईयां, किते यूक्रेन तां किते पछमी एशिया, हर पासे तनाव दा माहौल बन गया अते पता नहीं भविखबाणियां करन वालियां ने तां ना जाने की कोशिशां कर दित्तियां।

जो उन्हों को पहला तो मौजूद चीजा नालों बेहतर होन ते सानू वो चीजा दुनिया के मुकाबले सस्तियां भी देनिया पैनगियां। अते पंजाब के लुधियाना तो लैके तमिलनाडु के तिरुपुर तक साडा टैक्सटाइल सैक्टर पूरी दुनिया विच अपनी पछाण बना सकता है। इन्ना ही नहीं, केरलम तो लैके गुजरात तक, तमिलनाडु तो लैके बंगाल तक साडा समुद्री तट अते साडे मछुआरे भैन भरा इसी एफटीए दे कारण साडे श्रिंप यानी कि चींगे दे एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, साडे सी फूड की भी बहुत संभावना है। पूरी दुनिया विच साडी पहुंच बनन दे बहुत सारे अवसर सामने आए हैं। मैं चाहूंगा कि असी स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए लगातार अगे वधदे चलिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जो भूमिका तुहाडे सामने रखी है उस दे पिछे 2047 का टीचा इना मजबूत नीहां ते ही टिकिया होया है। 2047 तक विकसित भारत का यह टीचा पिछले 10-12 सालां विच देशवासियों ने जो समर्था दिखाई है उसे समर्था का एक हिस्सा है। सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है, अगला एक चौथाई साडे लई बहुत महत्वपूर्ण है। हुण असी रुक नहीं सकते, साडी रफ्तार नहीं रुक सकती, साडी दिशा तय हो चुकी है, सानू अपने टीचे प्राप्त करके ही रहना है। इसलिए सानू अपना वर्क कल्चर बदलना होवेगा। अपने वर्क कल्चर नू बदलदे होए सानू अपनी सोच नू भी बदलना होवेगा, सानू अपने काम की गति नू भी बदलना होवेगा। जो काम पिछले 5-7 दहाकियां विच नहीं होए हन, वो काम सानू आने वाले 5-7 सालां विच करके दिखाउणे हन। मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति ते, मेरे देश के नौजवानों ते, मेरे देश दियां मावां ते पैणां ते, मेरे देश के किसानां ते अते मेरे देश के मजदूरां ते कि असी इस सुपने नू साकार कर सकते हैं। अते इस लई सानू रिफॉर्म की गति नू भी अगे वधाउणा है। अते जदों मैं रिफॉर्म की गल कर रहा हाँ तां रिफॉर्म साडे लई कोई मजबूरी नहीं है, रिफॉर्म साडे लई कोई सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि रिफॉर्म साडे लई एक दृढ़ इरादा है। असी इसे दृढ़ इरादे नाल हुण रिफॉर्म एक्सप्रेस ते चल पए हाँ, अते असी आउण वाले दिनां विच भी नैक्सट लैवल रिफॉर्म वल वधण वाले हाँ। अते इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसे नू अपनियां रवायती व्यवस्थावां विच सुधार करना पवेगा, अपनी सोच विच सुधार करना होवेगा, सानू अपने टीचियां विच सुधार करना होवेगा। अते इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, सानू एक निश्चित दिशा लेके अग्गे वधना होवेगा। मैं अज उस युग नू भी याद करना चाहांगा जदों देश भारत की समर्था नू असी सपत सिंधु दे रूप विच जानदे सी, असी समझदे सी अते असी सुनदे सी। विकसित भारत बनाउण लई सानू नवी तारा दी लोड़ है। अज लाल किले दी फसील तो मैं पूरे देश दे सामने शक्ति दी सपत तारा दा सद्दा दिंदा हां। आउण वाले 5-7 सालां विच जो पिछले 5-7 दहाकियां विच नहीं हो सकिया, वो सपत तारा दी समर्था ते शक्ति नाल असी देश नू एक नवी ऊंचाई देवांगे, नवी गति देवांगे अते नवे टीचियां नू पार करन वाली समर्था देवांगे। अते इस दे नाल नाल देश दी युवा शक्ति दी समर्था दा राष्ट्र निर्माण विच भरपूर उपयोग होवेगा अते उना दी शक्ति इस विच जोड़ी जावेगी। आउण वाले दिनां विच जदों मैं सपत तारा दी गल करदा हां तां सपत तारा दी पहली शक्ति है मैनुफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, सानू मैनुफैक्चरिंग सैक्टर नू बहुत अगे वधाउणा होवेगा अते प्रोडक्शन वधाउण दे नाल नाल सानू छोटे छोटे अते वड्डे वड्डे प्रोडक्ट भी बनाउणे हन। पूरी वैल्यू चेन साडी होनी चाहीदी है अते उस नू लैके सानू कंपोनेंट भी चाहीदे हन अते सानू कंप्लीट मैनुफैक्चरिंग भी चाहीदी है, सानू कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहीदा है। डिजाइन तो लैके मैनुफैक्चरिंग तक भारत नू ग्लोबल सप्लाई चेन दा भरोसेमंद केंद्र बनना होवेगा। इस दे लई मैं तीन चीजां ते विशेष जोर देना चाहुंदा हां। मैनुफैक्चरिंग दे खेतर विच जो मेरे परा ते पैणा हन, इह समें दा वड्डा मौका है। इस मौके नू हथों जाण ना दिओ अते इस दे लई सानू कास्ट, क्वालिटी अते स्केल दे विषय विच विश्व पद्धरी मापदंड

देशवासियों, मेरे नौजवाना, मैं तुहानू चुनौती दिंदा हां, मैं बेनती करदा हां, मैनू तुहाडी मदद चांदा हां। 325 जिने मुकाबलियां विच भारत दो तिहाई खेडां विच किते हुंदा ही नहीं, साडी मौजूदगी नहीं हुंदी, असी क्वालीफाई नहीं हुंदे हां। 2036 विच जो ओलंपिक होवेगा, असी चाहुंदे हां कि वह भारत विच होवे, पर 2036 विच जिन्ना खेडां विच भारत अज नहीं खेडदा है, जिन्ना खेडां विच भारत क्वालीफाई नहीं करता है, जिन्ना खेडां नूं भारत ने छड़ के रख्या है, भारत उन्हां ते जोर देवेगा ते इस दे लई असी टैलेंट हंट दी एक मुहिम भी चलाउणा चाहुंदे हां। सानू जेकर 2036 लई खिडारियां दी लोड़ है तां सानू अज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान ने बेटे ने उन्हां ते ध्यान देना पवेगा, तियां ते ध्यान देना पवेगा, अते इसलिए 5 तो 15 साल की उम्र के बच्चों विच खेड प्रतिभा नूं लभण लई पिंड पिंड शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट मुहिम चलाई जाएगी। बच्चों की प्रतिभा नूं देखा जाएगा अते फिर उन्हां नूं विशेष सिखलाई देके देश लई खेडण वाले चंगे खिडारी बनाए जाणगे। मेरे प्यारे नौजवानों, देश दे सामने, देश दे नौजवानों दे सामने नशा एक बहुत वड्डा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये साडी सारयां दी सांझी जिम्मेवारी होनी चाहीदी है। साडे सुनहरी भविख लई साडी नौजवान पीढ़ी मजबूत होवे, साडे देश दे कम आईए, इस लई नशा मुक्त भारत। पिछले दिनी माई भारत दे वॉलंटियरां ने, देश दे समाजिक सभ्याचारक संगठनां ने, देश के अध्यात्मक पुरुषों ने मिलके नशा मुक्त भारत का 100 हफ्ते का एक प्रोग्राम तय किया है। 100 हफ्तों तक एक मुहिम चलन वाली है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हां कि तुसी भी इस मुहिम का हिस्सा बनो, तुसी इस नाल जुड़ो अते देश दे नशा मुक्त भारत के सुपने नू पूरा करन लई तुसी अग्गे आओ। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी विच दहाकियां पुरानियां जो चुनौतियां हन, उन्हां चुनौतियां नू खत्म करना बहुत जरूरी है। नक्सलवाद, माओवाद, लखां नौजवानों के भविख नू तबाह कर दिता, अनेकां मावां दे दुधमल नौजवानों नू खो लिया, बर्बाद कर दिता, हर मां बाप के सुपनियां नू चूर चूर कर दिता। इस नक्सलवाद ने 4-4 दहाकियां तक हिंदुस्तान के बहुत वड्डे हिस्से नू, बहुत वड्डी आबादी नू दबोच के रख्या सी, बंदूक दी नोक ते दबोच के रख्या सी, संविधान दियां तज्जियां उड़ा दित्तियां सन अते देश दे आम नागरिकां दी रख्या विच 3,500 तो भी वध साडे पुलिस दे सुरक्षा बल दे जवान शहीद हो गए। जंग दे अंदर जिन्ने सैनिक मरदे हन उस तो किते ज्यादा साडे पुलिस जवानां नू अपनी जान दी बाजी लगाउणी पई ता जो देश दे आम मानवी नू सुरक्षा मिल सके। इस नक्सलवाद ने साडी धरती नू लहू लुहान कर दिता सी। 2014 विच जदों तुसी सानू मौका दिता, उसे दिन असी संकल्प लिया सी कि असी देश नू नक्सलवाद तो मुक्त करांगे, अते मैनू अज खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखरी साहां ते भी शायद रहण दी हुण तां ताकत नहीं रही है। जिथे कदे नक्सलवादियां दियां गोलियां चलदियां सन, जिथे कदे धरती खून नाल लथपथ रहिंदी सी, उसे नक्सल प्रभावित खेतरां विच, उसे इलाकियां विच नक्सल मुक्त होण दे कारण विकास, विश्वास अते यतना दा तिरंगा लहरा रहा है। मेरे देशवासियों, पर असी इस चुनौती नू खट नहीं समझिया है। इस चुनौती नाल सानू होर भी सावधान रहने की लोड़ है। सालां तक देश की सत्ता विच माओवादी सोच वाले लोग गलियारियां विच अपनी थां बना के बैठे रहे, सरकारी कमेटियां विच सलाहकार वजों भी नीतियां नू प्रभावित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलां विच सानू हथियारबंद नक्सलियां दा खात्मा करन विच, उस संकट तो देश नूं मुक्त कराउण विच सफलता मिली है। पर हथियारबंद नक्सली तां चले गए,

पर दिमागी नक्सली ए दिमागी नक्सली मौके दी तलाश विच हन। हिंसा अते अराजकता दे ओह रस्ते लब रहे हन। समाज नू गलत रस्ते ते खिचण लई तरह तरह दिया चालां चल रहे हन। एना दिमागी नक्सलियां नू वखरा करना होवेगा अते राष्ट्र नू विकसित राष्ट्र बनाउण दी मुख तारा वल देश दी नौजवान पीढ़ी नू जोड़ना होवेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाउणा साड़ी सारयां दी जिम्मेवारी है। चुनौती सरहद दे अंदर होवे जां सरहद तो बाहर, भारत हर स्थिति लई तैयार है। अज युद्ध दा सुभाव बदल रहा है, हुण युद्ध सरहद ते ही हुंदा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुण युद्ध सरहद दे अंदर किते रिफाइनरी ते जाके, किते बैंकिंग सैक्टर ते जाके एक तरह नाल लड़ाई दा नवा रूप बुनियादी ढांचे नू तोड़िया जा रहा है, फैक्ट्रिया नू तोड़िया जा रहा है। असी मिशन सुदर्शन चक्कर दी पिछले सालां विच घोषणा कीती सी, बहुत तेजी नाल उस ते कम चल रहा है। आज साडा रखिया निर्यात करीब 5 गुणा वध्या है। गरीबी सदेशां विच साडे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। आलमी पद्धर ते भारत की साख हौली हौली वध रही है। बदलते हुए समय विच अस्त्र शस्त्र वल कम करना है, सैनिक बलों की समर्था वधाउणी है, पर नाल नाल नागरिकां नू भी तैयार करना होवेगा। पिछली सदी दियां जंगां दे अनुसार जो सिविल डिफेंस दियां व्यवस्थावां साडे देश विच विकसित होईयां हन, वो कार्रवाई हो चुकी है। अते इसलिए मैं अज लाल किले तो ऐलान कर रहा हां कि असी आउण वाले दिनां विच आधुनिक प्रणालियां नाल उहनां दी जाण पछाण करावांगे। आधुनिक संकटां तो नागरिकां दी रक्षा लई की व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत वड्डी वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस दी आधुनिक चुनौतियां नू पार करन वाली असी बनाउण जा रहे हां। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र दे निर्माण विच अज साडियां पैणां अते बेटियां दा योगदान साडे सारयां लई बहुत वड्डा है, प्रेरणा दा कारण बनिया होया है। फाइटर जेट होवे जां सिविल एविएशन, साडियां बेटियां सब तो अगे दिखाई दे रहियां हन। खेड दा मैदान होवे, साडियां बेटियां अगे दिखाई दे रहियां हन। स्टेम सिक्ख्या विच भर्ती दी प्रक्रिया होवे, सब तो अगे साडियां बेटियां दिखाई दे रहियां हन। अज फौज विच भी एनडीए विचों पास आउट होईयां बेटियां बड़े माण नाल देश दी फौज दी अगवाई करन दी समर्था दिखा रहियां हन। मैं एक सेमीकंडक्टर प्लांट विच गया सी, उत्थे आदिवासी बेटियां देश दे वक्ख वक्ख कोनियां तो आईयां तीयां कम कर रहियां सन। वो उस पिंड तो आईयां सन जिन्हां नू पासपोर्ट की हुंदा है ये भी नहीं पता सी। वो बेटियां विदेशां विच गईयां, सिखलाई लैके आईयां अते अज चिप बनाउण दा कम कर रहियां हन। अते उहनां दा विश्वास देख के मैं सचमुच बहुत प्रभावित होया। अज 3 करोड़ पैणां नू असी लखपति दीदी बनाउण दा टीचा रख्या सी, उस नू पार कर लिया। हुण असी 6 करोड़ लखपति दीदी बनाउण दे टीचे नू लैके अगे वध रहे हां। 3 करोड़ नवी लखपति दीदी बनण दा मतलब है कि पेंडू अर्थव्यवस्था विच बहुत वड्डा बदला मातृ शक्ति द्वारा आउण वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, अज पंचायतों विच, नगर पालिकावां विच, महानगर पालिकावां विच वड्डी गिणती विच साडियां औरतां लोक प्रतिनिधि बन के देश दा मार्गदर्शन कर रहियां हन, समस्यावां दा हल कर रहियां हन अते बहुत ही समर्थ लीडरशिप दे रहियां हन। अते इस नूं ध्यान विच रखदे होए असी संसद विच नारी शक्ति वंदन एक्ट पास कीता सी, पर किसे ना किसे कारण करके राजनीति दे अखाड़े विच पिछले 40 सालां तों ए सुपना हमेशा राजनीति दे अखाड़े दा शिकार हो गया। मैं देश दियां सारियां सियासी पार्टियां नूं अज लाल किले दी फसील तों तिरंगे झंडे दी छां हेठ खड़े होके अपील करदा हां, बेनती करदा हां, आओ उहनां औरतां दी समर्था दे पुजारी बनो, उहनां औरतां दे सन्मान विच अगे आओ अते जल्दी तो जल्दी साडियां मावां भैणां नूं 33% विधानसभा अते लोकसभा विच उहनां नूं नुमाइंदगी मिले, ओह भारत दी नीति काढ़त दे अंदर अपना योगदान देण। समें दी मंग है अते मैं

बदल के ही रहिए, आओ हर कदम नू विकास दा कदम बनाइए, कदम नाल कदम मिलाइए, मन नाल मन मिलाइए, अते टीचे नाल जुड़े रहिए। एक दीप से जगे दीप हजारों, आओ मिलके विकसित भारत बनाइए। इसे पावना दे नाल इस शुभ त्योहार ते तुहानू सारयानू बहुत बहुत मुबारकां। मेरे नाल बोलो भारत माता दी, भारत माता दी, भारत माता दी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने
0: और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
6: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
5: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
6: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
5: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा। रात

पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका।